सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। FM 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, आज दिन है शनिवार, शक संवत 1948, आषाढ़ महीने की आज 13वीं तिथि और अंग्रेजी वर्ष 2026 की आज जुलाई महीने की 4थी तारीख है। सभी श्रोताओं का एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूँ आज की इस पहली सभा में।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125 ए के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सांणंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरूआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन की निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10 से 11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना और कार्बो वर्डे 3-2 गोल की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: श्रोताओ, आप सुन रहे थे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। FM 100.2 MHz पर ही आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। चलिए अभी आपको जानकारी देते हैं आज की पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

श्रोताओ, अब से कुछ देर में यानी 6:10 पर आरंभ किया जाएगा आज के कार्यक्रम को भक्ति गीतों के कार्यक्रमों के साथ। उसके पश्चात आप सुन पाएंगे 6:30 पर वुमन सेंट्रिक फिल्म सॉन्ग और 7:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 7:05 पर आज का दिन कार्यक्रम और 7:30 पर बीट्स ऑफ हार्ट यानी दिल की धड़कन आज आप सुन पाएंगे इसमें कुछ स्पेशल गाने। 8:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात आप सुन पाएंगे और 8:15 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम। नॉर्थ ईस्ट न्यूज का समय रहेगा सवेरे 8:30 पर रिलीज किए जाएंगे आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से और 8:40 पर आज शुरू पाएंगे शुरू की रंगोली कार्यक्रम। सवेरे 9:00 आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से आप सुनेंगे पुआर आंचलिक बातरी और 9:15 पर खेलमा कार्यक्रम में सबसे पहले आज आप सुनेंगे खेलमा भक्ति गीत जिसे प्रस्तुत करेंगे नवजोली जयती और उनके साथ ही। 9:25 पर रंगखोल कार्यक्रम के तहत आप सुन पाएंगे रंगखोल पारंपरिक गीत और इसके गायक कलाकार है लेचिंग थोई बंखेंग और उनके साथ ही। 9:35 पर आप सुनेंगे जयंता कार्यक्रम में जयंता भक्ति गीत और उसके गायक कलाकार है केम लांग फोलनेम और उनके साथ ही। हमारे आज की पहली सेवा की अंतिम स्थानीय वर्षों के कार्यक्रम में 9:45 पर आप सुन पाएंगे बेते कार्यक्रम और उसमें सनहिमी दानी और उनके साथ ही प्रस्तुत करेंगे बेते भक्ति गीत। सवेरे 10:00 आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप सुन पाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम। दोपहर 12:00 आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार और यूं ही विविध भारती के कार्यक्रम और समाचार बीच बीच में जारी रहेंगे। साथ ही दोपहर 2:00 मुख्य समाचार आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से जैसे कि मिड डे न्यूज और उसके तुरंत बाद 2:15 पर दोपहर समाचार उसके तुरंत बाद आप सुन पाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम को शाम के 5:00 तक और उसके बीचों बीच समाचार जारी रहेगा। श्रोताओ, ये थी हमारी आज की पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज दिन ही शनिवार, चलिए शनि महाराज जी के भजन के साथ आरंभ करें इस दिन की।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे शनिदेव के प्यारा सा भजन एफ 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अभी आप सुन पाएंगे वुमन सेंट्रिक फिल्म सॉन्ग्स।

0: तो आप सुन रहे थे वुमेन सेंट्रिक फिल्म सॉन्ग्स FM 100.2 MHz पर आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। अभी आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीन

0: ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे, जिसकी कुल लागत 13,000 करोड़ रूपये से अधिक है। प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन के निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल तक $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10 से 11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने के लिए काम कर रहे थे। जांच में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन से फंडिंग का भी पता चला है। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने सरकार और भारतीयों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताओ, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार। FM 88.2 MHz पर यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। सुबह के 7:05 हो चुके हैं, यानी समय हो गया है आज का दिन कार्यक्रम का। और इस कार्यक्रम में सबसे पहले चलिए सुनते हैं आज की पोएम ऑफ द डे, जिसे कहा है पॉरी पॉल ने। चलिए सुनते हैं।
2: चंदा मामा गोल मटोल, चंदा मामा गोल मटोल, कुछ तो बोल, कल थे आधे आज हो बोल, खोल भी तो अब अपनी पोल, रात होते ही तुम आ जाते, संग साथ सितारे लाते, लेकिन दिन में कहाँ छिप जाते, कुछ तो बोल, कुछ तो बोल।
1: दोस्तों आज के दिन कार्यक्रम से पहले चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब रुक करते हैं आज के दिन की ओर, जहां हम जानेंगे इस दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक ऐतिहासिक घटनाएं, जन्मदिन और स्मृति तिथियां। आज का दिन विज्ञान, संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव से जुड़ी कई महत्वपूर्ण यादों को अपने भीतर समेटे हुए है। तो आइए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इतिहास के कुछ खास पन्नों के बारे में। और इससे पहले बात करते हैं आज के कार्यक्रम के अंत में, हम बात करेंगे दो महान व्यक्तियों के बारे में जिनका इस देश में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। और ध्यान से सुनिएगा कार्यक्रम को। चलिए शुरू करते हैं आज के दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। सबसे पहले बात करेंगे आज के दिन सन 1658 में ब्रिटेन के आविष्कारक थॉमस सेवरी को पहला व्यावसायिक स्टीम इंजन का पैटेंट प्राप्त हुआ। इस आविष्कार ने औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1776 में फिलिपिडिया में यूनाइटेड स्टेट्स डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को अपनाया गया। इसी ऐतिहासिक घोषणा के साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्वतंत्रता की नींव रखी गई। 1779 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेशवा और हैदराबाद के निज़ाम के साथ टीपू सुल्तान के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण संधि की। आज के दिन 1868 में ब्रिटेन की हस्कर कोल माइन दुर्घटना में बहुत सारे लोगों की आहत हुई। 1865 में प्रसिद्ध उपन्यास एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड पहली बार प्रकाशित हुआ। लेखक लुईस कैरोल की ये कृति आज भी विश्व साहित्य की सबसे लोकप्रिय पुस्तकों में गिनी जाती है। 1884 में फ्रांस ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी औपचारिक रूप से यूनाइटेड स्टेट्स को भेंट की। यह प्रतिमा आज स्वतंत्रता और लोकतंत्र का विश्व प्रसिद्ध प्रतीक है। 1946 में फिलीपींस को यूनाइटेड स्टेट्स से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई और वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। 1947 में ब्रिटेन संसद में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल प्रस्तुत किया गया, जिसने आगे चलकर भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। 1989 में नासा का मार्स पाथफाइंडर मिशन सफलतापूर्वक मार्स पर पहुंचा और उसके साथ गया सोजोनर रोवर लाल ग्रह पर चलने वाला पहला सफल रोवर बना। सन 2012 में सर्न के वैज्ञानिकों ने हिग्स बोसन कण की खोज

की घोषणा की। इसे आधुनिक विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक माना जाता है। अब जानेंगे कुछ महान व्यक्तियों के नाम जिनका जन्म आज के दिन यानी 4 जुलाई को हुआ। सन 1804 में प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक नेथलियन हाउथोर्न का जन्म हुआ। उनकी रचना द स्कारलेट लेटर विश्व साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियों में शामिल है। 1958 में भारत के पूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा का जन्म हुआ। उन्होंने 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी। 1916 में हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री नसीम बानो का जन्म हुआ। उन्हें अपने दौर की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में गिना जाता था। 1962 में प्रसिद्ध अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी टॉम शेवर का जन्म हुआ। उन्होंने कई ग्रैंड स्लैम युगल खिताब अपने नाम किए। साथ ही सन 1973 में जापान के प्रसिद्ध गायक और अभिनेता यकेट का जन्म हुआ, जिन्होंने संगीत और मनोरंजन जगत में अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई।

दोस्तों आप बात करते हैं उन महान व्यक्तियों के बारे में जिनका निधन आज के दिन यानी 4 जुलाई को हुआ। आज के दिन सन 1902 में भारत के महान सन्यासी और युवा प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद का निधन हुआ। उनके विचार आज भी विश्व भर के युवाओं को प्रेरित करते हैं। दोस्तों इनके बारे में अंत में हम विस्तार से जरूर बात करेंगे। 1934 में 2 बार नोबेल प्राइज से सम्मानित महान वैज्ञानिक मेरी क्यूरी का निधन हुआ। उन्होंने रेडियो एक्टिविटी के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया। 1963 में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया का निधन हुआ। उनका योगदान भारतीय इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। बात करेंगे इनके बारे में भी विस्तार से। 1982 में हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार भारत व्यास का निधन हुआ। उन्होंने उनके कालजीय गीतों की रचना की। सन 2006 में भारत में जर्मनी के पूर्व राजदूत और गांधी पीस प्राइज के सम्मानित गेरहर्ड फिशर का निधन हुआ। उन्होंने भारत

जर्मनी संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, ये थी हमारे आज की उन महान व्यक्तियों के नाम जिनका निधन आज ही के दिन हुआ। अब बात करेंगे विस्तार से स्वामी विवेकानंद और हमारे राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया जी के बारे में। इससे पहले चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों आप बात करते हैं, आज हम स्मरण कर रहे हैं भारत के महान संत, विचारक और युवा प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी को। स्वामी विवेकानंद का जिनका निधन 4 जुलाई 1902 को हुआ था, उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ। उनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्ता था। वे बचपन से ही तेज बुद्धि, जिज्ञासु और आध्यात्मिक स्वभाव के थे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और मानव सेवा का संदेश पूरे विश्व तक पहुंचाया। वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस में उनके सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका शब्दों से शुरू हुए भाषण ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर आकर्षित किया। उनके विचार आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और समाज कल्याण के कार्य को बढ़ावा देने था। उनका मानना था कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी ईश्वरीय सेवा है। वे हमेशा आत्मविश्वास, अनुशासन, शिक्षा और चरित्र निर्माण पर बल देते थे। केवल 39 वर्ष की आयु में उन्होंने 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में अंतिम सांस ली। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि याद हमारे भीतर आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और सेवा की भावना हो तो हम समाज और राष्ट्र के लिए महान कार्य कर सकते हैं। आज भी उनके विचार हर युवा के लिए प्रेरणा का प्रकाश है।

दोस्तों, दूसरे व्यक्ति जिन्हें हम आज याद कर रहे हैं, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगलाई वेंकैया को। उनका जन्म 2 अगस्त 1876 को वर्तमान आंध्र प्रदेश के भाट्लापेनू मारू गांव में हुआ था। वे एक स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षावादी, कृषि विशेष और भविजन के जानकार भी थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर कई वर्षों तक अध्ययन किया और विभिन्न डिजाइन तैयार किए। वर्ष 1921 में विजयवाड़ा में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने अपने ध्वज का प्रारूप महात्मा गांधी के सामने प्रस्तुत किया। बाद में इसी डिजाइन को के आधार पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज का विकास हुआ। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को अपनाया। यह तिरंगा आज भारत की एकता, स्वतंत्रता, शक्ति, साहस और प्रकृति का प्रतीक है। इसके निर्माण में पिंगले वेंकैया का योगदान हमेशा सम्मान के साथ याद किया जाता है। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय देश की सेवा और राष्ट्रीय जागरूकता के लिए समर्पित किया। सरल जीवन, देशभक्ति और समर्पण उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। 4 जुलाई 1963 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनका योगदान हर बार हमारे राष्ट्र ध्वज को सम्मानपूर्वक फहराते समय याद किया जाता है। उनका जीवन हमें देश प्रेम, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्र के प्रति समर्पण की प्रेरणा देता है। श्रोताओ, ये थी हमारे आज के दिन, जहाँ हमने जाना आज के दिन के महान व्यक्तियों के बारे में और आज के दिन के जन्मे और ध्यान हुए उन महान व्यक्तियों के बारे में भी जाना। साथ ही आज के दिन घटे इतिहास के कुछ खास पन्नों के बारे में हमने आपके साथ जानकारी साझा की। साथ ही स्वामी विवेकानंद और पिंगली वेंकैया जी के बारे में भी हमने विस्तार से बात की। आप शुरू करते हैं आज का खास कार्यक्रम दिल की धड़कन यानी बीट्स ऑफ हार्ट्स कार्यक्रम में। ये पहला गीत चलिए आपको सुनवाते हैं।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात।
1: थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और एल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20

0: लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक सीजी सेमी ऑसेट सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहाँ निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
3: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए, ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात 440 अरब डॉलर से बढ़ाकर करीब 530 अरब डॉलर और सेवाओं का निर्यात 421 अरब डॉलर से बढ़ाकर करीब 470 अरब डॉलर करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में 863 अरब डॉलर का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्क्यूर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक, वित्तीय, तकनीकी, निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मुसल्ला में आयतुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबोव, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को दूसरे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों की ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई।

0: का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रुपए के सौदे स्वीकृत, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन, टैंक, मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। लोकसत्ता लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्ता ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी ऐप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है बैट BMS जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला 3 तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है। घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें, मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है, अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार एफ एम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अभी आप सुन पाएंगे देशभक्ति गीतों के कार्यक्रमों में ये पहला गीत।

श्रोताओ, आकाशवाणी के शिलोंग केंद्र से आप सुन रहे थे नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ FM 100.2 MHz पर। यह आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अभी आप सुन पाएंगे सुरों के रंग वाले कार्यक्रम में सुमन कल्याणपुर जी के गाए कुछ बेहतरीन गाने।

दोस्तों आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर जी के गाए कुछ बेहतरीन गाने सुरों की रंगले कार्यक्रम के तहत। अभी आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से पुआर आंचलिक बातोरी।

श्रोता, आप सुन रहे थे भक्ति गीतों के कार्यक्रम में खेलमा भक्ति गीत, जिसके गायक कलाकार थे नवजोल नजीते और उनके साथी। अभी आप सुन पाएंगे रांखोल गीतों के कार्यक्रम में रांखोल पारंपरिक गीत, और इसके गायक कलाकार है लेचन थोए बैंखेंग और उनके साथी।

दोस्तों आप सुन रहे थे रांगोल कार्यक्रम में रांगोल पारंपरिक संगीत। इसके गायक कलाकार थे लेचुम थोय बंखेंग और उनके साथी। अभी आप सुन पाएंगे जनता कार्यक्रम में जनता भक्ति गीत और इसके गायक कलाकार है केमन लॉन्ग फोलियम और उनके साथी।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे जनता कार्यक्रम में जनता भक्ति के, जिसके गायक कलाकार थे केविन लांग फोलियम और उनके साथी। अभी आप सुन पाएंगे बेते कार्यक्रम में हमारी आज की पहली सभा की अंतिम स्थानीय वर्षों के कार्यक्रम में बेते भक्ति गीत और इसके गायक कलाकार है सनहिमी डरने और उनके साथी।

0: प्यारे श्रोताओ, आप सुन रहे थे हमारे आज की स्थानीय भाषाओं की अंतिम कार्यक्रम में बेते कार्यक्रम, और इसमें सनही मिडाने और उनके साथ ही आपको सुनवा रहे थे बेते डिवोशनल सॉन्ग्स यानी भक्ति गीत FM 100.2 MHz पर या आकाशवाणी के कार्यक्रमों को। चलिए आनंद लीजिए विविध भारती के कार्यक्रमों का।
1: कहानी सुनहरी पूंछ वाला अमर पंछी, वाचन स्वर ममता सिंह का है।
2: प्रेम परछाई है, नहीं वो नदी के तटों की तरह है, कभी न मिल पाने को अभिशप्त। प्रेम हमारे भीतर के नमक की तरह है, नहीं प्रेम तेजाब की तरह है, भीतर तक सब कुछ खत्म कर देने वाला। प्रेम कोमल अनुभूति है, नहीं वो विद्रोह का उद्घोष नाद है। लड़की के मन में खलबली मची है, उसके चारों तरफ घुप अंधेरा है, भीतर के अंधेरे में घुल रहा है बाहर का अंधेरा। वो उस अंधेरे की आदि थी, भीतर के अंधेरे में घुल रहा है बाहर का अंधेरा, वो उस अंधेरे की आदि थी। वो इसे जानती थी, वो अंधेरे से नहीं डरती थी, वो किसी से नहीं डरती थी। वो नदी से मछलियां ले आती, शिकार करती और गोफन तान कर ऊंचे पहाड़ों से फल गिरा लेती। नदी की धार के खिलाफ तैरती हुई मछलियां उससे पीछे छूट जाती। वो अलबेली, अल्हड़, चुलबुली और अपनी ही धुन की थी, बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग।

और वे खेती या दिगर काम करते हैं। वहाँ कुछ दुकानें होती हैं, स्कूल अस्पताल जैसी सुविधाएं भी हो सकती हैं, पर वो ऐसा नहीं था। वो छोटी सी बस्ती, कुल 20-22 टपरियां होंगी और 100 के करीब लोग, किसी फलिए की तरह गांव बाकी दुनिया से खोया हुआ था। हाँ, सरकारी नक्शे में जरूर जंगल के बीच सुई की नोक की मानिंद था। नदी से कुछ दूरी पर पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटे से ओटले पर पत्थर की एक मूर्ति थी। गांव के मंदिरों और दीगर जगहों पर अमूमन कई मूर्तियां हुआ करती हैं, पर ये उन मूर्तियों से बिल्कुल अलग थी। ये एक औरत का बुत था, वो देवी की तरह नहीं थी। देवी की मूर्तियों के हाथों में हथियार या फूल जैसी चीजें होती हैं। ये पत्थर की औरत उसी तरह थी जैसे यहाँ की दूसरी औरतें। बुत में वो मुस्कुराती हुई दिखती, मानो कुछ ही पलों में खिलखिलाकर हंस पड़ेगी। किस राम के इंतजार में है ये पत्थर की अहिल्या? उस लड़की के लिए वो बुत बचपन से ही किसी रहस्य की तरह था। गांव में कोई शादी करके लौटता है तो नए जोड़े को सबसे पहले यही लाया जाता। लाल ध्वजा, घी का दिया, ताजे फूल, अगरबत्ती का धुआं, लोबान का धुआं, नारियल, दानी चुनरी, ढोल ढमाकों के साथ सब यहां पूजा करते हैं। उनके साथ औरतों का हुजूम होता। उसने नानी से कई बार पूछा था, नानी हमेशा ही उसे टाल दिया करती। उसे नानी ने कई कहानियां सुनाई, पर ऐसा क्या था इस कहानी में कि उस बुत की बात आते ही वो डरने लगती? किसी अनहोनी की आशंका में उसकी आंखें फटने लगती। नानी उसे बच्चों की तरह अपने अंक में भर लेती और उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाती रहती जब वो डरती। वे शायद तब किसी तूफान से गुजर रही होती, सूखी नदी में तपती रेत का दरिया पार कर रही होती। चंदा नाम था उसका। नानी ने पहली बार उसे देखा था तो सहसा ही ये नाम उसके मुंह से निकल आया था, उसके लिए अतखिला चांद का टुकड़ा। इस तरफ काले लोगों और अंधेरों के बीच रहने वाली नानी को उसकी कंचन सी देह से नया उजाला दिखा था। तब नानी उसकी कंचन काया से डरी थी। उसकी मां को कहा था, ज्यादा अटोपनी पड़ेगी इसे, सुंदर लड़कियां मां बाप के लिए परेशानी का सबब होती हैं। हाँ, उसके आने पर आधी रात पीतल की थाली बजाई गई थी। अंधेरी रात में दूर तक थाली की आवाज गूंजती रही। नानी को तब क्या मालूम था कि आगे चंदा को उसे ही अटोपना पड़ेगी और उसे ही अतिरिक्त सावधानी भी रखनी होगी। चंदा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उसके अनुपात में नानी की चिंताएं भी बढ़ने लगी थीं। नानी कहती, ये दूसरों की अमानत है, इसका शादी ब्याह हो जाए तो मेरी चिंता खत्म, फिर मैं चैन से मर सकूंगी। उसने बचपन से बस नानी को ही देखा था, वही उसके लिए माँ बाप थी। उसने अपने बचपन की सारी चाहतें नानी को ही पूरे करते देखा था। नानी कभी उस पर चढ़ जाती तो कुढ़ने लगती, तार सी लंबी हो चली है पर अक्कल बच्चों जैसी, जब देखो घोड़ी जैसी दांत पिलकाती रहती है, उलल बछेरी कहीं की, सारा दिन यहाँ वहां घूमती रहती है। अरे जमाना बहुत खराब है, कल को कुछ हो गया तो कहां मुँह छुपाऊंगी मैं। पर नानी की डांट जैसे ठंड की धूप, भीतर ही भीतर उसमें अपनेपन की गुनगुनी आँच होती है। नानी।

वो नानी को जैसे तैसे मना ही लेती। कुछ ही पलों में नानी भी भूल जाती तो उसे कब याद रहता। उम्र बढ़ने के साथ लड़की की देह से चंदन की खुशबू का सोता फूटने लगा। वो चंपा की तरह लरजती थी, तितलियों की तरह हल्की होकर फूलों के कानों में कुछ कहती तो वे खिलखिलाने लगते। वो नदी के पास जाती तो नदी उससे अटखेलियां करने लगती। पहाड़ की ओर जाती तो उसकी घाटियों में रंग बिरंगे फूलों का गुलिस्ता खिल उठता। वो खिलखिलाती और हर श्रृंगार झड़ने लगते। उसकी सांस की लय पर पेड़ सरसराने लगते। वो पूरब की ओर देखती तो धूप खिल उठती। वो जंगल की भाषा जानती थी और जंगल उसकी भाषा पहचानता था।

नानी से कहानी सुने बिना कोई रात वो सोती नहीं थी। नानी गजब की किस्सागो थी। किस्सागो उनकी तासीर में थी। वो ऐसे सुनाती कि चित्र चलने लगते। वे उस समय में दाखिल हो जाया करती मानो किरदार खुद अपनी बात कह रहे हों। नानी की कहानियां जैसे उसकी लोरी थी। नींद की घाटियों में वो उन किरदारों के बीच बहती रहती, घूमती रहती। वे किरदार सपनों में अक्सर उससे बातें किया करते। कई बार ये भी होता कि किरदार उसके भीतर इस तरह बस जाते कि वो उनके प्रभाव से बहुत दिनों तक बाहर ही नहीं आ पाते। तब वो बेचैन सी नदी के तट पर जा बैठती, जैसे नदी से कुछ पूछ रही हो, गुमसुम सी, अनमनी और उदास, भीतर ही भीतर सुलगती हुई घंटों तक इसी तरह बैठी रहती। नानी की कहानी सुनने से पहले दो शर्त होती। शर्त नहीं तो कहानी नहीं। चंदा हर बार ये शर्तें मानती। पहली शर्त थी हुकारा, मतलब हाँ में हाँ मिलाते चलो। जब वे कहानी कहती तो जरूरी था कि सुनने वाला कुछ देर में हाँ हाँ कहता रहे। वे कहती कि हुंकारा टूटा तो कहानी की डोर भी टूटी।

नानी अक्सर छोटी कहानी सुनाती थी, पर कभी कभी कहानी लंबी हो जाती। नानी कहती कि ये उसके हाथ में नहीं है कि किसी कहानी को कहां खत्म करें, ये तो किरदार ही तय करते हैं, कहने वाले का उन पर कोई जोर नहीं चलता। कहानी सुनते हुए वो अक्सर नानी के देह के स्पर्श की आंच महसूस करती और इस आंच में नानी की तरह वो भी घुलने लगती। नानी की देह में नमक सी खुशबू थी जो उनके किरदारों में से उनमें आई होगी। लोक कथाएं हो या सीता, उर्मिला, मंदोदरी, अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, गांधारी, राधा और मीरा की कहानी, इनके प्रेम और इनसे किए छल की कहानियां नानी इस अंदाज में सुनाती कि जैसे इनके दुख उसने अपने ही कलेजे में छुपा रखे हैं। वे कहती किसी समय में स्त्री मुक्त नहीं रही, न तब और न अब, हर दौर में उसे आग से ही गुजरकर परीक्षा देनी पड़ी। हाँ, यही उसका भाग है, उसे हमेशा प्रेम की जगह छल ही मिला, फिर भी उसने प्रेम का अंकुर कभी सूखने नहीं दिया। अपनी आत्मा को आंसुओं की नमी और दुखों के ताप से उर्वर बनाए रखा। आषाढ़ के आखिरी दिनों की कोई रात रही होगी, ताप और उमस से भरी हुई, हवा जैसे कहीं थम गई थी, आंगन के ऊपर आसमान में तारे ही तारे थे। नानी उस रात उसे उर्वशी पुरुरवा की कहानी सुना रही थी, ईसा से 1600 साल पुरानी कहानी, पुराणों की पहली कहानी, आज से करीब 3500 साल पुरानी। नानी कहानी सुना रही थी। स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी उर्वशी। उर्वशी के पास सब कुछ तो था, लेकिन ऐसा सरल जीवन और मनोरम प्रकृति कहाँ। स्वर्ग में नृत्य, संगीत और आकर्षण के स्थिर सपनीली दुनिया से अलग, यहाँ धरती पर राग रंग, जीवन संघर्ष, मौसमों की आवाजाही और प्रकृति का पल पल बदलना। उर्वशी को धरती हमेशा लुभाती थी। एक दिन वो धरती की सुंदरता देखने आई और जंगल की झील में अपना अक्स देखने में ऐसी खो गई कि शाम से पहले वापस स्वर्ग लौटना ही भूल गई। धरती के जंगल है ही इतने सुंदर कि कोई भी रम जाए इनमें। चंदा ने हुंकारा भरा, हाँ ये बात तो है, जंगल है ही इतने सुंदर। नानी ने कहानी को आगे बढ़ाया। तो शाम घिर आई, चांदनी रात में झील का सौंदर्य और बढ़ गया। उर्वशी के रूप गंध से जंगल महकने लगा। इससे केसी नाम के राक्षस का पुरुषत्व जाग उठा। उसने उर्वशी का हाथ पकड़ा और उसे जबरन ले जाने लगा। उर्वशी ने सहायता के लिए पुकारा। रात के नीरो सन्नाटे को चीरते हुए स्त्री का आर्तनाद जंगल में दूर दूर तक फैल गया। चंदा ने दोनों हथेलियां अपनी ठोड़ी पर रखते हुए पूछा, अरे फिर क्या हुआ नानी, कोई आया उसे बचाने? नानी ने अपनी आवाज को और भीतर तक ले जाते हुए कहा, हाँ थोड़ी दूरी पर पुरुरवा शिकार के लिए गुजर रहे थे। पुरुरवा एक प्रतापी राजा था, स्त्री और गरीबों का रक्षक, प्रतिष्ठानपुर का राजपाट होते हुए भी एकदम एकाकी। ओशिन सहित कई रानियां थीं, पर मन की बात कोई नहीं समझ पाती। राग रंग में मन नहीं लगता तो वो रात को शिकार पर निकल जाता। प्रेम से रीता इंसान कई बार लक्ष्यहीन हो जाता है। केसी राक्षस से भिड़ जाते हैं पुरुरवा और बचा लेते हैं उर्वशी को। चंदा ने चहकते हुए हुंकारा भरा, हाँ ये हुई ना बात नानी। नानी को इस तरह कहानी की शुरुआत में ही चंदा का फैसला देने वाला अंदाज ठीक नहीं लगा, पर वो भी आखिर के सागो थी। उसने अगले ही पल चंदा को फिर से बेचैन कर दिया। नानी ने आवाज बदली और वे कहने लगी, लेकिन यही आता है एक नया मोड़ जो बदलता है पुरुरवा और उर्वशी की जिंदगी को। केसी से छुड़ाने में कई बार पुरुरवा और उर्वशी का एक दूसरे से स्पर्श हुआ। दोनों के भीतर स्पर्श से तरंगित सितार के कई तार छिड़ गए। चांदनी रात के दूधिया उजाले में दोनों की आंखें मिली
तो वे एक दूसरे की आंखों में कुछ ढूंढने लगे। बरसों की आस घुमड़ आई, अनायास बारिश होने लगी। उस रात दोनों की बरसों से तपती अतृप्त देह अंधेरे और बारिश में एक होने को आतुर थी। दोनों की देह उस बियाबान में अकथ प्रेम की कहानी लिखती रही। चंदा ने हुंकारा देते हुए पूछा, हाँ तो फिर शादी हो गई दोनों की? नानी ने डपटते हुए कहा, अरे ऐसी आसान कहाँ होती है कहानियां चंदा। उर्वशी यहां धरती की नहीं, वो तो स्वर्ग की थी ना। नानी फिर शुरू हो गई, तो सुबह पुरुरवा ने भारी मन से उर्वशी को स्वर्ग भेज दिया। दोनों रीते रह गए, भीतर ही भीतर कुछ खो गया। न पुरुरवा का मन धरती पर लग रहा था और न ही उर्वशी का मन स्वर्ग में। एक का धरती पर राजसी ठाट बाट तो दूसरे का स्वर्गिक आनंद, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रेम में झुलस रहे थे। दोनों अनमने

अनमनी उर्वशी, नानी कुछ कहती इससे पहले ही एक तारा टूटकर जमीन पर आने लगा और नानी ने कहानी वहीं रोक दी। चंदा शर्त से बंधी थी, वो कहानी के इस तरह अचानक बीच में रुक जाने से उदास हो गई, पर कहा कुछ नहीं। उसे पता था कि नानी अपनी शर्त कभी नहीं तोड़ती। अधूरी कहानी उसके भीतर देर तक घुमड़ती रही। नानी को तो

नींद आ गई, पर उसकी आंखों में नींद कहाँ। वो सोने की जितनी भी कोशिश करती हर बार निष्फल ही रहती। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। चांदनी रात में पीपल के नीचे ओटले पर वो औरत बुत की तरह मुस्कुरा रही थी। उसने सोचा, हर औरत एक बुत ही तो है। महज मुस्कुराती हुई, क्या सांस लेना और दिल का धड़कना ही जीवन है। चंदा सोचती तो सोचती रहती देर तक। कोई भंवर उठता उसकी आंखों की झील में, कोई बवंडर उठता उसके मन में, गीली लकड़ी सी धू धू करके उसकी देह सुलगने लगती।

इस वक्त आकाश की याद में है, बड़ी शिद्दत से, मानो बीता हुआ सच अभी गुजर रहा हो उसकी आंखों के सामने। वो कहाँ होगा? क्या वो भी उसे याद करता होगा? पता नहीं। यही नदी के किनारे उन्होंने एक दूसरे को पहली बार देखा था। दोनों को नदी ने देखा था, पीपल की बुत वाली औरत ने देखा था, पहाड़ ने देखा था और जंगल ने भी। उसने उसे देखा तो वो देखती रह गई। ऐसा कोई इधर उसने कभी देखा नहीं। उसे लगा कि ये जंगल की कोई परी है, किसी ने तन्मय होकर तराशी है उसकी देह। बड़ी बड़ी आंखें, सुतवा नाक, लरजते से नाजुक होठ, सुराही का गला, काले बालों का लहरदार जूड़ा, लाल ओढ़नी, धानी घाघरा, जैसे वन देवी हो या राह में भटकी हुई कोई राजकुमारी। वो खो गया था। वो अब महसूस कर रही थी उसकी आंखें उसे भेद रही हैं, शायद भीतर आत्मा तक। उसकी आंखों में भी इंद्रधनुष तनने लगा था। सपनों से उसके जीवन में उतर रहा था प्रेम, धीरे धीरे अपने अंक में लेती हुई आज थी वहां। वो उस ताप से अपने में ही बिखर रही थी और वो फैल रहा था उसके वजूद में, हौले हौले। चंदा तिल तिल आकाश के वजूद में समा रही थी। उसका अपना सब कुछ विलीन हुआ जा रहा था। प्रेम में दो हो ही नहीं सकते, वहां अद्वैत है। आकाश की तरह उसने भी चंदा को अपने में समेट लिया था। आकाश के बिना चंदा, तो चंदा के बिना आकाश कैसा? वे प्रेम में थे या उनके साथ पूरी प्रकृति ही प्रेम में थी?

आकाश जिसके वजूद में चंदा तिल तिल समा रही थी, वही आकाश दरअसल यहां जंगल बचाने आया था। कुछ लोग जंगल को खत्म कर देना चाहते थे। वो जंगल को उसी तरह रखना चाहता था जैसे जंगल बरसों से था। वो नदी में मछलियों की आवाजाही देखता रहा। चंदा के पैरों को छूते हुए नदी का पानी अपनी धार में बह रहा था। तब से अब तक न जाने कितना ही पानी बह गया होगा इस धार में। वो सोचने लगता है, स्मृतियां दुख से भर देती हैं, जख्म हरे हो जाते हैं। क्यों नहीं भूल पाते हम दुखद स्मृतियों को? मानो कहीं भीतर फंसी रह जाती हैं ये दुखद स्मृतियां। सपनों से जीवन में आया प्रेम कब फिर सपनों में लौट जाता है, हम समझ भी नहीं पाते। प्रेम दुर्लभ है, शायद हवा के वर्जित फल की तरह। कुसुम जो चंदा की प्रिय सहेली थी, शुरू से ही इसके खिलाफ थी, पहले दिन से। वो कहती थी, प्रेम कुछ भी नहीं है, बस छलावा है, एक भरम है, एक बहाना है। दोनों नदी के तट पर इसी जगह बैठी थीं। चंदा ने कुसुम से हंसते हुए कहा, कुसुम तुझे वो कहावत याद है ना, झड़त पान हसत पीपली, झड़त पीपली हसत पान। मतलब? कुसुम ने पूछा था। चंदा बोली, अरे जब पतझड़ में सारे पेड़ पौधों के पत्ते गिरते हैं तो पीपल उन नंगे दरख्तों पर हंसता है, और जब सारे पेड़ पौधे पर नई कोपले आने लगती हैं तो छोटे छोटे पत्ते आने लगते हैं, तब पीपल के पत्ते झड़ने लगते हैं और सारे उस पर हंसते हैं। चंदा ने हंसते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया। आज मैं प्रेम में हूं तो तू मुझे ऊंच नीच समझा रही है। कल जब यही तेरे साथ होगा तब मैं। कुसुम ने बीच में ही बात काट दी। ऐसा कभी नहीं होगा चंदा, मैं नहीं पढ़ने वाली तेरी तरह प्रेम रेम के चक्कर में, चंदा ने चहकते हुए कहा था। पगली, कोई सोच समझकर थोड़ी ही प्रेम करता है, ये तो बस हो जाया करता है। प्रेम दिमाग से परे होता है, वो तो मन की किताब में कैद होता है। प्रेम मन में होता है, अनजाने में, जानबूझकर नहीं। चलो चलो, प्रेम अंधा होता है, कुसुम ने कहा। नहीं कुसुम, प्रेम तो आंखें खोल देता है, चंदा बोली। प्रेम संकीर्ण कर देता है, कुसुम बोली। नहीं रे, प्रेम तो संकीर्णता को तोड़ता है, प्रेम सारी हदें तोड़ देता है। प्रेम निस्सीम है, निस्सीम, चंदा बोली। प्रेम समझ को ही खत्म कर देता है, ये एक तरह का पागलपन ही है चंदा। प्रेम जीवन को नए अर्थ देता है, वो दो दिलों को जोड़ता है, ये तो एक अलग अनुभूति होती है। प्रेम हमारे पागलपन का उपचार है, दवा है, प्रेम दवा है। चंदा, प्रेम आग है, आग। कुसुम, आग भी तो जरूरी है ना जीवन के लिए, आग से ही तो अनाज पकता है, आग से ही लोहा ढलता है, आग से ही सोना तपता है। आग नहीं तो जीवन कैसा, हर सर्जन आग की भट्टी से ही तो उपजता है। चंदा, प्रेम अपनों से तोड़ देता है, समझी? नहीं रे, प्रेम किसी को नहीं तोड़ता। कुसुम, जो प्रेम को नहीं समझ पाते वे खुद टूट जाते हैं, प्रेम तो हमेशा जोड़ता ही है। चल हट, तुझसे तो बात करना ही व्यर्थ है चंदा। अरे सिर्फ प्रेम की बात पर ही ना कुसुम, बाकी बातों में तो नहीं। ऐसा इसलिए है कि तूने प्रेम को अब तक सिर्फ दूर से ही देखा है, दूसरों की नजरों से ही ना, उसमें डूबना तो दूर, तूने तो छुआ तक नहीं है, फिर उसके बारे में कैसे जान सकती है भला। चंदा उन पलों को शिद्दत से याद करती है तो उसके भीतर यादों की नदी मचलने लगती है। उसे अपने ही तन की खुशबू अब पराई सी लगती है। उसका पुरुरवा भी क्या उसे इसी तरह कहीं याद करता होगा? याद करता होता तो लौट आता अब तक। कभी कभी लगता है कुसुम सही कहा करती है,
कभी लगता है उसका मन सही कहता है, अपने ही द्वंद्व में उलझी है वो, पर उसे भरोसा है अपने प्रेम पर, पूरा भरोसा है कि एक दिन लौट आएगा आकाश भी। चंदा और आकाश जब मिलते तो देर तक बातें करते रहते, उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती थीं। उनके पास बातों का खजाना था, कभी वे बातें करते हुए जंगल में खो जाते तो कभी पहाड़ से उतरती नदी को देखते रहते। नदी का ये तट उन्हें सबसे अच्छा लगता, उनके पैर नदी के पानी में होते और इस तरह नदी प्रेम को सींचती थी। उनकी बातें नदी में गिरती रहती, नदी उन बातों के टुकड़ों को सहेज लेती। वे चिड़ियों से शब्द लेते, वे पपीहे से प्यास लेते और अपने प्रेम को गाढ़ा होते देख रहे थे।

आकाश को बुत वाली औरत की कहानी उसने ही सुनाई थी। आकाश का हाथ पकड़कर वो उसे बुत के पास ले गई थी। बुत वाली औरत मुस्कुरा रही थी। आकाश, ये बुत देख रहे हो ना? ये बुत नहीं है, सच की औरत है, इसी गांव की। करीब 400 साल पहले यही इसका घर था। हर दिन नदी के पास की पगडंडियों से पहाड़ की ओर बकरियां लेकर ये निकल जाया करती थी। कभी वो बहुत मीठा गाती थी, पहाड़ पर गाती तो गांव सुनता रहता। उसके गाने में ताकत थी कि गीत सुनते हुए कोई दूसरा काम नहीं कर पाता, जो सुनता वही ठहर जाता। उसकी आवाज में दर्द था, उसके दर्द से भीगे गीत पहाड़ की घाटियों में गूंजते रहते देर तक। नदी के साथ बहते हुए गीत बहुत दूर तक चले जाते। आकाश हतप्रभ था, ऐसा गीत, ऐसा गला कहां से सीखा था उसने? अपने ही दुखों से, अपने ही भीतर से। यह कौन किसको सिखाता है, सब अपने ही भीतर सीखते हैं। कहते हैं वो गले से नहीं गाती थी, अपने कलेजे को ही चीर लेती थी वो, वहीं से फूटता था गीत। चंदा की आंखें बुत पर टिकी थी। ऐसा क्या दर्द था उसका, प्रेम का दर्द, जिसका कोई उपचार उसके पास नहीं था, कोई दवा नहीं थी उसके पास। फिर क्या हुआ, आकाश बेताबी से पूछ रहा था। उसने भी किसी से प्रेम किया था, कहीं से सौदा बेचने यहां आया और प्रेम लेकर चला गया, फिर बरसों तक इधर नहीं लौटा। वो उसका इंतजार करती रही। इंतजार का दर्द सिमट आया था उसके गीतों में।

तो क्या वो फिर कभी नहीं लौटा? क्या वो उसे भूल गया? नहीं, वो उसे अपने देश, अपने गांव ले जाने को लौटा था, पर वो उसके साथ जाने को तैयार नहीं थी। उसे इस जंगल से इतना प्यार था कि कहीं जाने की बात कभी सोच भी नहीं पाती। हार कर सौदागर ने भी यहीं रहने का फैसला कर लिया। वो बहुत खुश हुई। वो संकोच में थी कि घर वालों को ये सब कैसे बताए। तभी एक किस्सा हो गया। किस्सा? कैसा किस्सा? एक रात नदी के तट पर ठीक यहीं वे दोनों अपने सपनों में खोए हुए थे। तभी गांव के कुछ लोगों ने उन्हें यहां इस तरह देख लिया। थोड़ी ही देर में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। इस तरह किसी गैर पुरुष के साथ? गांव वालों में से किसी एक ने पहला पत्थर उछाला। फिर तो इतने पत्थर चले, कि वही दोनों लहू लुहान हो गए। इतने पत्थर खाकर वे बचे नहीं। वे तो नहीं बचे, लेकिन उनका प्रेम जीत गया था जमाने से, अपने समय से।

उसके बाद गांव में जैसे मुर्दान की छा गई। संकट पर संकट, गांव वाले परेशान। संकट में ही याद आते हैं अपने किए हुए बुरे कर्म। ये उसी औरत की वजह से तो नहीं, पूरे गांव ने नाक घिसी यहां आकर। किसी मूर्तिकार ने उसकी मूर्ति गढ़ी पत्थर में। तब से अब तक इसे लोग देवी की तरह पूजते हैं। लेकिन कुंवारी लड़कियों को यहां नहीं आने देने के पीछे क्या वजह है? डर, प्रेम से। उन्हें लगता है कहीं वे भी प्रेम में न पड़ जाएं। कोई मां अपनी बेटी को यह किस्सा तक नहीं सुनाती कि कहीं उसकी बेटी भी प्रेम न करने लगे। आकाश ने कहा था, तो क्या इन 400 सालों में कुछ भी नहीं बदला? बिल्कुल नहीं। शायद ये दुनिया का पहला ऑनर किलिंग रहा होगा। बहुत देर तक दोनों के बीच सन्नाटा सा रहा। वे भी धीरे धीरे पत्थर के शक्ल में ढल रहे थे। दूसरी रात नानी ने फिर शुरू की थी उर्वशी की कहानी वहीं से, जहां तारा टूटने पर छोड़ी थी। नानी कह रही थी, अनमने से उर्वशी नृत्य नाटिका में लक्ष्मी का अभिनय कर रही थी। उसके ध्यान में पुरुरवा थे। उसने नाटिका में जैसे ही विष्णु की जगह पुरुरवा कहा तो स्वर्ग में खलबली मच गई। नृत्य नाटिका के निर्देशक भरत मुनि ने उसे शाप दे दिया, तू जिसके प्रेम में है जा उसे ही वरण कर। वो प्रेम में थी तो उसे ये शाप भी वरदान ही लगा। उसने पुरुरवा के पास संदेश भेजा। पुरुरवा ने उसे धरती पर बुलवा लिया। गंधमादन की रमणीक पहाड़ी पर दोनों प्रेम में रहने लगे। अच्छा, इस तरह तो प्रेम जीत गया नानी, चंदा बोली। नानी ने कहा, सरल नहीं होती जिंदगी की राह बेटा, वो कई मोड़ मुड़ती है। हाँ, प्रेम को कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अब आगे सुन। पुरुरवा उर्वशी के लिए फल लेने जा रहे थे कि जंगल में उसकी आंखें पल भर के लिए नदी से झुककर पानी भरती हुई एक युवती पर ठहर गई। पुरुरवा को बिना बताए उर्वशी भी थोड़ी दूर पर उनके पीछे चल रही थी। एक स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है पर अपनी उपेक्षा नहीं। वो डाह से भर उठी और वहीं एक बेल में बदल गई। पुरुरवा परेशान, सब तरफ देखा ढूंढा पर कहीं नहीं। पुरुरवा विरह से बहुत दुखी हुए। एक मुनि ने देखा तो दया से भरकर उन्होंने पुरुरवा को एक मणि दी, जिसके छूते ही उर्वशी फिर से स्त्री बन गई। वो बेल में नहीं बदली थी, शायद वो बेलों के पीछे अपने में ही छुप गई थी। नानी कहे जा रही थी, बहुत मनाने पर उर्वशी उसके साथ रहने को तैयार तो हो गई, पर उस बार उसने पुरुरवा के सामने शर्त रख दी। कैसी शर्त नानी? प्रेम में शर्त? भला कैसे? चंदा के माथे पर बल पड़ गए थे। नानी की कहानियां ऐसे ही कई मोड़ों से भरी होती हैं, उसकी अपनी जिंदगी की तरह। ऐसा लगता कि बस अब कहानी का सुखांत होता ही है और तभी कोई एक नया मोड़ आ जाता उसमें। सुनने वाला अचरज में पड़ जाता है। नानी कहती, अरे मोड़ नहीं तो कहानी क्या? नानी ने कहा, हाँ प्रेम में शर्त। ये उसकी प्रेयसी बनकर तभी तो उसके साथ गंधमादन पहाड़ पर रहेगी जब तक कि उनमें से कोई एक दूसरे को निर्वस्त्र नहीं देख लेते। जिस दिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को बिना कपड़ों के देखा, उसी पल उर्वशी उससे संबंध तोड़कर वापस स्वर्ग चली जाएगी। तो क्या पुरुरवा ने शर्त मान ली? चंदा कहानी के भंवर में धंसती जा रही थी। नानी ने कहा, अरे वो क्या करता, वो तो उर्वशी के प्रेम में था, उसके पास कोई विकल्प नहीं था शर्त मानने के सिवा। उसने शर्त मान ली। अब वे दोनों उजाले में सामने नहीं पड़ते, पर रात के अंधेरे में दोनों एक दूसरे में खोए रहते। दोनों सुख से रहने लगे। राजपाट का काम भी पुरुरवा वहीं से देखते थे। वे बरसों तक अपनी राजधानी ही नहीं लौटे। फिर क्या हुआ नानी?
क्या किसी ने उनके राज्य पर हमला कर दिया? चंदा की बेचैनी अब चरम पर थी। नानी ने कहा, अरे नहीं रे, पुरुरवा जैसे प्रतापी राजा के राज्य पर हमला करने की हिम्मत भला कौन करता? दूसरी बात हुई। उर्वशी के चले आने से स्वर्ग में उदासी फैल गई थी। नृत्य और संगीत बिना अधूरे हो गए थे। वहां नृत्य में चपलता नहीं, संगीत में सुर नहीं, लय ताल आरोह औरोह सब भूलने लगे। वहां और भी अप्सराएं थीं, लेकिन नृत्य और संगीत की आत्मा तो जैसे उर्वशी में ही बसती थी। इंद्र के साथ बाकी देवता भी चिंता में पड़ गए। गंधर्व तो बिना आत्मा के शरीर की तरह हो गए थे। तभी उन्हें कहीं से उर्वशी की शर्त के बारे में पता लगा। उन्होंने एक खेल रचा, छल किया पुरुरवा से। नानी ने एक ठंडी सांस भरी। एक पल को अंधेरे में कुछ सोचती रही, फिर कहानी में लौट आई, जैसे वो भी अपने अतीत से लौट रही हूं। नानी ने कहा, उर्वशी ने बहुत ही सुंदर सफेद फर वाले दो मेमने पाले थे। उर्वशी उनका बहुत ध्यान रखती, उन्हें हमेशा अपने साथ रखती थी। एक रात जब वो पुरुरवा के अंक में आराम कर रही थी, तभी गंधर्व ने छल से एक मेमना चुरा लिया। चोरी करते हुए उन्होंने जानबूझकर कुछ खटर पटर किया, जिससे उर्वशी की नींद उछट गई। उसने पुरुरवा को उठाया कि कोई उसका मेमना चुरा कर ले जा रहा है। वे नींद से नहीं जागे तो उर्वशी उन्हें भला बुरा कहने लगी। छल की योजना पूरी होते न देखकर उन्होंने दूसरा मेमना चुराने का साहस किया। फिर उर्वशी ने उन्हें उठाया। इस बार पुरुरवा अपने आप को रोक नहीं सके और बिस्तर से खड़े हो गए। तभी देवताओं ने बिना मौसम की आसमानी बिजली चमका दी। पल भर को उर्वशी ने पुरुरवा को और पुरुरवा ने उर्वशी को निर्वस्त्र देख लिया। शर्त टूट गई थी। उर्वशी को फिर स्वर्ग लौट जाना पड़ा। पुरुरवा अकेला रह गया, अनमना और उदास। वो बिछोह की आग में जल रहा था और उर्वशी भी जल रही थी बिछोह में।

पुरुरवा का राजकाज में मन नहीं लगता था। रह रहकर उर्वशी की याद सताती। कई महीनों बाद उर्वशी एक बार फिर पुरुरवा को किसी निर्जन झरने में स्नान करते हुए दिखी। देर तक दोनों एक दूसरे को विछोह की कहानियां सुनाते रहे। पुरुरवा के प्रेम में उर्वशी को पिघलना ही पड़ा। उसने कहा, वो स्वर्ग के नियम से बंधी है, लेकिन हर साल के आखिरी दिन उससे मिलने धरती पर जरूर आएगी, और वो आती रही हर साल इसी तरह एक रात के लिए। चंदा ने फिर हुंकारा भरा, अच्छा फिर क्या हुआ नानी? नानी ने आगे कहा, एक बार देव और दानों का जोरदार युद्ध हुआ, बहुत बड़ा। देवता जितनी भी कोशिश करते, दानों फिर उन्हें पीछा कर देते। ऐसे समय उन्हें धरती पर रहने वाले पुरुरवा की याद आई। पुरुरवा ने युद्ध में देवताओं की मदद की। इंद्र ने लौटते समय उर्वशी को भी उनके साथ भेजा। उर्वशी स्वर्ग से मुक्त होकर हमेशा के लिए धरती पर आ गई। फिर जिंदगी भर दोनों हमेशा साथ साथ रहे। उनके कई पुत्र हुए, फिर प्रेम की जीत हुई। स्वर्ग और धरती का मिलन हुआ हमेशा के लिए गंधमादन की पहाड़ियों पर।

नानी की कहानी तो पूरी हो गई थी, पर चंदा के भीतर बवंडर घुमड़ रहा था। वो सोच रही थी कि दुनिया की खिलाफत

0: जाता है, खुद अपनी चिता बनाता है और उसी में जल जाता है। इसी राख से एक नया पक्षी जन्म लेता है। शायद प्रेम भी फिनिक्स की तरह अपनी ही राख से बार बार उग आता है और इसी तरह उगता रहेगा प्रेम हमेशा हमेशा।
1: सुनहरी पूंछ वाला अमर पंछी, ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखक थे मनीष वैद्य, संपादक स्नेहल भिसे, वाचन स्वर ममता सिंह, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मंदाकिनी जोशी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था दूसरा आदमी। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे राजेश रोशन।
1: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
2: जब पेशेंट आता है एकदम से, तो उसको लेप्रोस्कोपी आईवीएफ या आईयूआई एडवाइज हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे, और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है, जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफरेंसिएशन है, B12 हो, ये सब देकर।
1: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये स्वर था लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम था कलाबाज। जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक बिन, तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

लवर्स का दो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। युगल स्वर लता मंगेशकर और अमित कुमार के हैं, रचना आनंद बख्शी की और धुन राहुल देव बर्मन की।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग कर रहा था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं खय्याम साहब की संगीत निर्देशन में गुलजार साहब की रचना, आवाजें हैं अनवर और सुलक्षणा पंडित की, फिल्म का नाम है थोड़ी सी बेवफाई।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह और साथियों को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था दो जासूस। गीतकार हसरत जयपुरी थे और संगीतकार थे रविंद्र जैन। इस गाने के साथ ही आज का ये चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटिनी शो। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, बारिश प्रकृति का एक अनमोल उपहार है जो चिलचिलाती गर्मी से हमें राहत दिलाता है और ताजगी और ठंडक प्रदान करता है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही मिट्टी से एक बहुत ही मनमोहक और सौंधी खुशबू आने लगती है। आसमान में काले काले बादल छाते ही मन हर्षित हो जाता है ना? और ये बादल तो हमेशा ही मानव मन में कल्पना जगाते हैं, प्रेम और उमंग जताते रहे हैं। चाहे वो नीले आसमान में तैरते रुई जैसे गोले हों, या सावन के गहरे उमड़ते घुमड़ते बादल या काली घटाएं, ये सभी हमारे मन को बहुत लुभाती हैं। हमारे ही मन को क्यों, हमारे फिल्मकार, हमारे गीतकार इससे अछूते थोड़े ही रहे हैं। वो भी इन काले बादलों पर अपना मन हार बैठते हैं और अपनी फिल्मों में या अपने गीतों में इन काले काले बादलों को स्थान देने लगते हैं। तो आज मैटिनी शो में उन्हीं कारे कारे बदरवा पर लिखे कुछ गीत हम लेकर आए हैं।

आज मैटिनी शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कारे बदरा पर आधारित कुछ फिल्मी गाने। और जब बात कारे बदरा की चले और फिल्म भाभी का गीत हम आपको नहीं सुनवाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो देखिए, ये फिल्म थी भाभी, 1957 की फिल्म है और लता मंगेशकर की आवाज थी, संगीतकार चित्रगुप्त थे, गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण। और एक भावुक और बहुत ही मधुर गीत लिखा गया और इस गाने में अभिनेत्री श्यामा ने बहुत ही शानदार अभिनय किया था।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लता मंगेशकर की आवाज में लिया है। 1953 की फिल्म है शिकस्त, संगीत शंकर जयकिशन का था। और सबसे बड़ी बात कि ये भी वर्षा के मौसम और प्रियतम की याद में जो गीत गाए गए, जो गीत लिखे गए, उन्हीं शुरुआती बेहतरीन गानों में से एक ये भी गीत है। फिल्म का नाम है शिकस्त और इसके गीतकार हैं शैलेंद्र।

बादलों ने हमेशा प्रकृति प्रेमी को लुभाया है। हमारे गीतकार, हमारे फिल्मकारों ने तो इनका वर्णन किया ही है, लेकिन जो हमारे महान साहित्यकार हुए हैं वो भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। अगर हम जयशंकर प्रसाद की बात करें, महान छायावादी कवि, उन्होंने भी बादलों के घुमड़ने और उनके सौंदर्य पर बहुत ही सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। घिर रहे घुमड़ कर आसमान में, भर रहे गर्जन गंभीर, शून्य में उड़ते विहग अब लौट चले अपने कुटीर। यानी ये काले बादलों के भव्य, शांत और गंभीर रूप का उन्होंने इन पंक्तियों में चित्रण किया है। तो ऐसी ही एक फिल्म है 1969 की फिल्म धरती कहे पुकार के, और इस फिल्म का गीत है जारे जारे कारे बदरा। बहुत ही खूबसूरत गीत, हमें बेहद पसंद आता है, आप सभी को भी पसंद आता है। लता मंगेशकर की आवाज है और नंदा और जितेंद्र पर इस गीत को फिल्माया गया है, और ये गीत बादलों को संबोधित करके अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए बहुत ही मशहूर है। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, हमारी हिंदी फिल्मों में, खासतौर से हिंदी फिल्मों की ही बात चल रही है, बादल एक महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है। कभी ये दूर रहने वाले प्रियतम को संदेश पहुंचाने वाले दूत का प्रतीक होते हैं, तो कभी किसी बिछड़े प्रेमी के गहरे दुख को दर्शाते हैं, कभी प्रेमिका के घने लहराते बालों की तुलना आकाश के काले भूरे बादलों से हम करते हैं, तो कभी कुछ और। ये बादल अशांत, चंचल, शरारती और कभी कभी निर्मम भी हो जाते हैं, और बहुत सारे गीतों में इनको याद किया जाता है, कभी बादल के रूप में, कभी बदरा के रूप में, कभी घटा के रूप में, कभी मेघा के रूप में, अलग अलग शब्दों में इनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन भाव वही होता है कि हम जब किसी को याद करते हैं तो लगता है कि ये बादल शायद हमारे लिए मेघदूत का काम करेंगे। एन दत्ता के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा है। आशा भोसले, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजें हैं। ये फिल्म है धूल का फूल।

दोस्तों, बादल केवल बारिश का पानी ही नहीं लाते हैं, बल्कि ये आसमान के कैनवास पर प्रकृति द्वारा उकेरी गई एक ऐसी कविता होती है जो पल पल अपना रंग और रूप बदलती रहती है। बादल हमें कभी किसी रूप में नजर आते हैं, कभी किसी आकृति में, और हम जब बादलों को बहुत ही गौर से देखते हैं तो न जाने कैसी कैसी सुंदर आकृतियां बन जाती हैं, है ना। तो चलिए फिल्म दिल दे के देखो, जो कि 1959 की फिल्म है, उसका एक सदाबहार गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। बेहद रोमांटिक और मनमोहक गीत है। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी है और संगीतकार उषा खन्ना है। और इस गाने में बारिश के मौसम की प्राकृतिक सुंदरता और नायिका की भावनाओं के बीच का संबंध गीतकार ने लिखा है। यानी बोल जैसे हैं, मेघारे बोले घनन घनन और पवन चले सनन सनन, यानी बारिश के आने और ठंडी हवाओं के चलने का वर्णन गीतकार ने बहुत ही शानदार तरीके से इस गीत में किया है, जो वातावरण में एक मादक और खुशनुमा माहौल पैदा कर देते हैं। और जैसे ही मौसम सुहावना होता है, नायिका का मन जियारा मोरा डोले अपने प्रियतम के लिए पुकारता है और उसका जिया मचलने लगता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये गीत नायिका के उस मनभावन इंतजार और अपने प्रेमी के प्रति उमड़ते प्यार को दर्शाने वाला बहुत ही प्यारा गीत है, जो बारिश के मौसम में और गहरे काले बादल के छा जाने पर ये गीत भी उतना ही गहरा हो जाता है।

तो आज हमने उन गीतों को लिया जो हमें भी मोह लेते हैं और हमारे गीतकारों को भी, यानी आसमान में छाए कारे बदरा। तो कार्यक्रम के अंत में अब हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म बहाना का गीत जारे बदरा बैरीजा। एक बेहद खूबसूरत और भावुक मेरा गीत है ये, जिसे राजेंद्र कृष्ण ने लिखा है और मदन मोहन ने संगीतबद्ध किया है और आवाज यानी मधुर आवाज लता मंगेशकर की। और इस गीत में नायिका बादलों से बात कर रही है और अपने प्रीतम के लिए, अपने सांवरिया के लिए अपनी तड़प बता रही है, अपने इंतजार को बता रही है। और नायिका बादलों को अपना दुश्मन कहती है और कहती है क्योंकि सावन का मौसम और बादलों की गड़गड़ाहट उसके अकेलेपन को, उसके विरह को और बढ़ा रही है। और ऐसे में वो बादलों को कोसने के साथ साथ उनसे विनती भी करती है कि वे उसके प्रियतम के पास जाएं और उनकी कोई खबर या संदेश लेकर आए। तो वो कहती भी है कि पिया के दर्शन के बिना उसका मन तड़प रहा है, पी के दरस को जियरा तरसे, और उसका इंतजार यानी उसकी आंखें थक गई है, बाट तकत मोरी हारी नजरिया। बहुत ही खूबसूरत गीत उनके भावों के साथ नायिका के, जो कि बादलों के जरिए अपने पिए के पास अपना प्रेम संदेश और अपने रो रो कर बीते दिनों का हाल अपने साजन तक पहुंचाना चाहती है। तो आइए सुनते हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये बेहद ही खूबसूरत गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नए टर्मिनल भवन से यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इससे क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया, जिससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने असम और अरुणाचल प्रदेश में अत्यधिक बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान के आकलन के लिए अंतर मंत्रालय दल भेजने के निर्देश दिए। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केको फुखिमोरी को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्द-ए-खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में आयातुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने हालिया संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इससे पहले मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के रोमांचक मुकाबले में काबू वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5

0: बच्चों की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टर लिस्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले किए गए थे हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का हफलांग केंद्र है। दोस्तों, चलिए मनोरंजन को जारी रखते हुए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम में आज हम याद करेंगे महान गीतकार पंडित भरत व्यास को। दो आंखें बारह हाथ, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत हम कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रही हैं। आवाज लता मंगेशकर की, पंडित भरत व्यास की बोल और वसंत देसाई का संगीत।

0: मीना कपूर की आवाज को अभी आपने फिल्म आंखें में सुना। पंडित भरतव्याज की रचना थी और मदन मोहन का संगीत। जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। ये स्वर है लता मंगेशकर का, फिल्म का नाम है अमर ज्योति। पंडित भरत व्यास की रचना को संगीत में ढाला है वसंत देसाई ने।

यादों के महफिल कार्यक्रम में आज हम याद कर रहे हैं पंडित भरत व्यास को। आइए सुनते हैं उन्हीं का लिखा कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है जय चित्तौड़। आवाज लता मंगेशकर की और धुन बनाई है SN त्रिपाठी ने।

उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास की बोल सुनिए। आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की। फिल्म का नाम है हम हिंदुस्तानी।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक बिन, तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

एस एन त्रिपाठी के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास की रचना, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम जन्म जन्म के फेरे।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर, मीना कपूर, मन्ना डे और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है अंगुलीमाल। रचनाकार पंडित भरत व्यास हैं और संगीतकार हैं अनिल बिस्वास।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम की अगली पेशकश, फिल्म का नाम है बेदर्द जमाना क्या जाने। गाने वाले कलाकार मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर, पंडित भरत व्यास के बोलों को संगीत में ढाला है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। आशा भोसले की आवाज फिल्म का नाम भक्त प्रहलाद, गीतकार पंडित भरत व्यास और संगीत दिया है बी एन बाली ने।

कार्यक्रम का अगला गीत वसंत देसाई के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास का लिखा हुआ, स्वर है मन्ना डे, सुमन कल्याणपुर और साथियों की, और ये फिल्म है भरत मिलाप।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आशा भोसले की आवाज में फिल्म गृह लक्ष्मी का गीत सुनिए। गीतकार पंडित भरत व्यास और संगीतकार हैं अविनाश व्यास।

0: की अकुलाहट होने पर भी पैर आगे नहीं बढ़ रहे।
1: तो आइए हम लोग उधर अशोक के तले प्रेमगुलता मंडप में बैठे।
0: अच्छा चल।
1: अरे ये क्या स्वामिनी?
0: क्या क्या हुआ रिनी पुणिका?
1: हम चली थी आम की कोपल ढूंढने और काट लिया चींटियों ने।
0: अरे क्या कह रही है
1: देवी? तनिक उधर देखिए, उधर वहां अशोक की छाया में महारानी धारणी की दासी बकुलावलिका मालविका के पैर रंग रही है।
0: मालविका तो इधर आ नहीं सकती, आज इसे किसने इधर आने दिया?
1: मैं समझती हूँ कि पांव की चोट के कारण महारानी धारिणी तो आ नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने स्वयं ही अनफूले अशोक पर पदाघात करने का काम मालविका को सौंप दिया होगा। नहीं तो महारानी क्या कभी अपने नूर पर उतार कर इन दासियों को दे सकती थी?
0: हाँ हो सकता है, परंतु मैं सोचती हूँ कि
1: तो क्या महाराज को अब ढूंढिएगा नहीं?
0: पता नहीं क्यों मेरे पांव आगे नहीं बढ़ रहे। आ यहाँ आड़ में हो जाए। कुछ संदेह सा हो गया है, संदेह का निराकरण तो होना ही चाहिए। मालविका का ये साथ सिंगार, इन्हीं बातों से तो मेरा जी जल जाता है।
2: क्यों सखी, पैरों पर ये महावरी रंगाई पसंद आई?
3: अपने पैरों की प्रशंसा करते मुझे लाज लगती है सखी। अच्छा सखी ये तो बताओ कि श्रृंगार की इतनी बढ़िया कला तुम्हें सिखाई किसने?
2: सच सच कह दूं ये कला मैंने स्वयं महाराज से सीखी है।
3: सच? बड़े भाग्यवान हो, इतने पर भी तुम्हें तनिक भी घमंड नहीं।
2: पर मैंने जो कुछ सीखा है वैसी कला दिखलाने योगी तुम्हारे सुंदर चरण पाकर आज तो मुझे अवश्य घमंड हो गया है। हाँ
3: लो तुम्हारा एक पैर तो रंगा गया।
2: आहा, ये पैर तो लाल कमल के समान खिला पड़ रहा है। लाओ अपना दूसरा पैर तो। मैं तो मनाती हूँ कि तुम सदा महाराज के अंक में रहो।
3: सखी ऐसी बेसिर पैर की बातें ना कहा करो।
2: जो कहना चाहिए वही तो कह रही हूँ। हाँ
3: मैं तुम्हें प्यारी हूँ इसीलिए।
2: मुझे ही नहीं तुम महाराज को भी प्यारी हो।
3: ये सब झूठ है, उनका तो मुझ पर तनिक भी प्रेम नहीं।
2: सयानों का कहना है कि प्रेम की परीक्षा प्रेम से ही होती है।
3: हाँ क्या ये सब अपने मन से ही करती जा रही हो?
2: ये प्रेम पगे शब्द स्वयं महाराज ने अपने मुंह से कहे हैं।
3: सच? सखी उधर महारानी का व्यवहार देखती हूँ तो रही से ही आशा भी मिट जाए।
2: अरे पगले भौरों के डर से कोई कानों में आम्रमंजरी पहनना थोड़े ही छोड़ देता है। लो इस पैर में भी महावर लग गया, अब इन दोनों पैरों में नूपुर पहना दूं? लो अब उठकर इस अनफूले अशोक की इच्छा पूरी करो।
3: अरे क्या सोच रही हो? सखी यदि कभी मुझ पर कोई विपत्ति आए तो मेरा साथ ना छोड़ देना।
2: अरे मेरा तो नाम ही बकुलावलिका है, मैं तो जितनी ही अधिक मसली जाऊंगी उतनी ही अधिक सुगंध दूंगी।
4: वाह बकुलावलिका वाह। मित्र बकुलावलिका ने बड़ी चतुराई से मालविका के मन की था लेकर हमारा प्रेम प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उसके नाना करने पर भी उसे एकदम पक्का कर लिया। आज हमें विश्वास हो गया कि प्रेमियों के प्राण सचमुच ही दूतियों की मुट्ठी में रहते हैं।
5: महाराज उधर देखिए, मालविका ने अशोक के कोमल पत्तों का गुच्छा कानों में लटका लिया और अब अपने बाएं सुंदर सजीले पांव से ये किया उसने अशोक पर प्रहार।
4: यदि इन चरणों की पूजा पाकर भी अशोक न फूला तो दोष इनके चरणों का नहीं ही अशोक ही निकम्मा समझा जाएगा। मित्र हम लोगों को किसी बहाने उनके पास चलना चाहिए।
5: तो आइए महाराज मैं कुछ खेल खेलता हूं। मालविका

0: क्या हमारे प्यारे अशोक पर अपने पैर से प्रहार करके आपने कोई अच्छा काम किया?
1: आई गौतम ए महाराज भी
0: क्यों रही बकुला वालिका, सब कुछ जानते हुए भी तुमने इन्हें ऐसी धृष्टता करने से रोका क्यों नहीं?
1: आर्य गौतम, मैं आर्य, इसने धृष्टता जानबूझकर नहीं की थी, महारानी धारणी की आज्ञा का ही इसने पालन किया है। फिर भी हम दोनों महाराज के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करती हैं।
2: अच्छा तो कोई बात नहीं, उठो मालविका, हमारा हाथ पकड़ कर उठो।
0: ठीक है ठीक है ठीक है, महारानी की आज्ञा तो माननी ही चाहिए थी।
2: क्यों भद्री, तुम्हारा ये किसले कोमल बायां चरण अशोक वृक्ष पर लगने से दुखने तो नहीं लगा है? लजाओ नहीं विलासिनी, बोलो।
1: सखी, महारानी को जाकर सूचना दी कि उनकी आज्ञा अनुसार हमने।
3: अरे पहले महाराज से जाने की अनुमति तो ले।
2: भद्री तुम जा सकती हो, परंतु इससे पहले हमारी एक बात सुननी होगी।
4: मालविका अग्निमित्र महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण अभी आप सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद सीताराम चतुर्वेदी, रेडियो नाट्य रूपांतरकार एवं निर्देशक चिरंजीत। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: दोस्तों, विविध भारती के कार्यक्रम को थोड़ी देर के लिए विराम देते हुए सुनते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हफलोंग केंद्र है।
1: अगली पीढ़ी के लिए बात तो तेरी काम की लगती है।
2: अच्छा तो एंटर मार दे अपने दिमाग के कंप्यूटर में, फटाफट थोड़ा कंट्रोल कर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,05,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर भी राष्ट्र को समर्पित किया। 90 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले इस परिसर की स्थापना 79,450 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने

0: तौर पर बधाई देता हूं। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने 13

0: देते हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने 13 राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। संशोधन से केंद्र सरकार को संगठनों के साथ साथ व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने का अधिकार मिल गया है। व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म, निर्माताओं और वितरकों का संरक्षण करना है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्द खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, जिसके लिए सुरक्षा और यातायात के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन

0: 2 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए गए थे हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। दोस्तों चलिए एक बार फिर आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

0: उसमें जो दूसरा गाना मैंने लिखा, जो आप टाइप की बात कर रहे हैं, टाइप्ड में इसलिए नहीं हुआ कि मैंने ऐसा नहीं सिर्फ चुनरिया ही लिखी। लगभग 5,000 गाने मेरे रिलीज हैं, तो 5,000 चुनरिया तो नहीं है।
1: हाँ।
0: और मैंने हर चुनरिया अलग स्टाइल में लिखी,
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल अलग मैंने किया। लक की ऐसी बात है कि जिस म्यूजिक डायरेक्टर के पास भी मैं गया, जिस प्रोड्यूसर के पास भी गया, उसने कहा यार एक चुनरिया मेरे लिए भी।
1: अच्छा,
0: ऑन डिमांड पे चुनरिया चलती थी। ये ऐसा हुआ कि एक बार शानुदा एक फिल्म के प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो मेरे को वो मिले दिल्ली में। दिल्ली में जब मिले तो मैंने कहा दादा आप प्रोड्यूसर बन रहे हो, म्यूजिक डायरेक्टर भी हो, तो मैं गाना तो यार मेरे से लिखवाओ, तू लिखेगा? हाँ क्यों नहीं लिखूंगा, कल घर पे आ जा। साथ में ही फ्लाइट में थे हम लोग।
1: हाँ?
0: तो वो शायद कलकत्ता जा रहे थे, मैं यहाँ आया और अगले दिन मैं उनके पास चला गया और हम लोगों ने 6 गाने लिख लिए। 6 गाने के बाद उन्होंने मेरे को बोला था सुबह आना पड़ेगा 7 बजे, क्योंकि 10 बजे मैं रिकॉर्डिंग में जाऊँगा। मैंने कहा सर मैं कभी 7:05 पे नहीं आऊँगा, लेकिन एक बात मैं बताऊँ उस आदमी की, टाइम का क्या पंक्चुअल आदमी है। मैं घर पे बेल बजाई तो दरवाज़ा भाई नहीं खोला,
1: कुमार सानू
0: को
1: सर।
0: वो जगह ही रहता था
1: अरे
0: और फुल तैयार, बाजा रखा, हाँ बोल, हम लोग बैठ जाते थे। सारा जब काम

0: हो गया तो मेरे को बोलता है, शायद भाभी ने बोला, वो अंदर से एक आवाज़ आई कि कंप्लीट हो गए गाने, कि हाँ ना भाई साहब, इसमें आपका वो लक्की गाना तो है ही नहीं,
1: चुनरिया
0: चुनरिया। और नेक्स्ट डे दादा ने फिर वो उस फिल्म में भी चुनरिया मुझसे लिखवाई,
1: वो
0: तो
1: कौन सा गाना था?
0: रंगलीनी चुनरिया ऐसा एक गाना था। इत्तफाक से वो फिल्म में रिलीज नहीं हुआ, लेकिन वो अभी चलता रहता है।
1: तो आपने अभी जैसा कि बताया, हिमेश रेशमिया के साथ बहुत सारे गाने
0: जी
1: कंपोज किए और वो सब सुपर डुपर हिट हुए।
0: जी
1: इनसे पहले आप किन किन संगीतकारों की संगत में आए, उनसे भी प्रभावित हुए होंगे, उनके भी कुछ अनुभव आपसे जुड़े होंगे?
0: जी जी मैंने पहले तो संगीत के बेताज बादशाह शंकर जयकिशन, तो शंकर जी के साथ जुड़ा और उनके साथ फिल्म की मैंने, फिर एक फिल्म मैंने की कल्याण जी आनंद जी के साथ, लेकिन वो सिटिंग तक ही रह गए गाने, वो बाहर नहीं आए। एक फिल्म मैंने नैयर साहब के साथ भी की।
1: अच्छा।
0: ये सारी फाइलें जो है ना, वो सब वो है जो इसमें मेरे गाने रिलीज नहीं हुए, बट उन लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने उन लोगों के साथ जो काम किया, उनसे मैंने सीखा बहुत। भले ही वो गाने मेरे नहीं आए, लेकिन मैंने सीखा बहुत। और सीखने की हद यहाँ तक थी मेरे अंदर कि मैं हमेशा जो है ये सोचता था कि अगर मेरे पास कोई काम आ रहा है तो मैं किस म्यूजिक डायरेक्टर को लूँ। जैसे एक फिल्म मेरे पास आई जिसमें मैं डायरेक्टर भी था, फिल्म थी सावन, तो मैंने कहा यार इसमें रविंदर जैन साहब को लेते हैं, तो मैं रविंदर जैन जी के पास गया। अब देखिए, दादू से बड़ा राइटर मैं मानता नहीं, वो म्यूजिक डायरेक्टर और राइटर का
1: जी
0: अजीब कॉम्बिनेशन है।
1: जी जी
0: तो मेरे को सब लोगों ने डराया कि भाई वो उनको लेगा तो वो खुद ही लिखेंगे। मैंने कहा भाई वो तो है, लेकिन चलो मैं बात करता हूँ। मैं दादू के पास गया और एक दिन तो मैं ऐसी बातचीत उनसे कर करा के चला आया, तो मेरे को उठते हुए पूछा उन्होंने, कह रहे क्या काम से आया था। मैंने कहा दादू एक पिक्चर मिली है मुझे, आपके साथ करना चाहता हूँ। और तो करना मैंने कब मना किया है, मैंने कहा लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? गाने तू ही लिखेगा।
1: अरे क्या बात है।
0: हाँ बोले तो लिख लेना, कोई बात नहीं, उसमें क्या
1: हाँ,
0: है, कुछ नहीं लिख पाएगा तो मैं लिख दूंगा।
1: अरे वाह।
0: मैंने कहा दादा ठीक है, लेकिन गाना मैं लिखूंगा।
1: हाँ,
0: तो मैंने गाने लिखे और दादू ने म्यूजिक दिया, और ये उनका बहुत बड़ापन था। उनके साथ जो बैठ के मैंने काम किया, और मैं ईमानदारी से बोलता हूँ कि मेरी राइटिंग में भी उन्होंने कई जगह ऐसे सजेशन दिए कि तू चाहे तो इसको ऐसा कर ले, नहीं चाहता है तो तेरा ठीक है। लेकिन मुझे उसमें एक और सम्मान देते हुए उन्होंने मुझे एक सीख दी कि अगर भाई कुछ सीनियर लोग अच्छी बात करते हैं तो उसको मानना
1: मानना
0: चाहिए।
1: चाहिए।
0: उसके बाद मैंने दादू के साथ तीन पिक्चरें की, बाहर की पिक्चरें थी, मैं गीतकार था, और प्रोड्यूसर को मेरे गाने पसंद आए तो बोले यार मैं रविंद्र जैन से बात करूंगा, वो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। जैन साहब ने मेरा कोई गाना रिजेक्ट नहीं किया, और एक दिन मुझे फ़ोन करके एक फिल्म के लिए बोले अरे तेरा एक कागज़ उड़ता उड़ता इधर आ गया है। मैंने दादू एक फिल्म में मैंने एक गाना लिखा है प्रोड्यूसर के लिए, वही आया होगा आपके पास। बोले हाँ कल रिकॉर्डिंग है, आ जाना।
1: अरे वाह।
0: तो इतने ग्रेट थे,
1: जी
0: वरना कहाँ रविंदर जैन और
1: जी
0: कहाँ सुधाकर शर्मा,
1: जी
0: क्यों मेरे गाने लेंगे वो।
1: सही
0: देखिए
1: बात है।
0: रविंदर जैन इतने महान थे कि मैं बताऊं कि उनके घर में जब हम जाते थे, कभी भी बांद्रा जब अगर हमको जाना है तो एक प्यारे भाई और एक रविंदर जैन, मतलब इनसे बिना मिले आ ही नहीं
1: जी
0: सकते।
1: जी जी
0: तो जैन साहब के घर जब भी हम लोग जाते थे तो जाते ही बोलेंगे क्या रे वो शिमला वाले वो बने हैं चावल
1: अच्छा।
0: और कश्मीर का राजमा है,
1: अरे
0: एक प्लेट में ला के दे।
1: हाँ,
0: मतलब वो इस बात को जानते थे कि ये स्ट्रगलर हैं, आए हैं,
1: भूख
0: भूखे
1: लगी
0: प्यास लगी
1: होगी
0: होगी, और ये मांगेंगे नहीं। लेकिन
1: बहुत।
0: बिना खाए उस रसोई से भाभी ने, जो उनकी मिसेज थी, वो और दादू हंसते हुए विदा करते थे।
1: बहुत खूब।
0: एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले मुझे एक गाना आप सुनाइए।
1: हाँ,
0: एक गाना है मेरा, फिल्म है शिखर,
1: गाना कौन सा है?
0: गाना है नीले नीले आसमां में तू है, जगजीत जी का गाया हुआ।

0: ये गाना आपने जो सुना
1: जी,
0: ये वो एक दौर का गाना है। इसका एक अजीब किस्सा है। इंडस्ट्री में मैं किसी भी लिरिक राइटर से मिलता था तो वो बोलता था, मैंने कहा भाई क्या चल रहा है, बोले मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर लिख रहा हूँ।
1: अच्छा
0: किसी म्यूजिक डायरेक्टर से पूछूं, मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर लिख रहा हूँ। वो मैं सभी जॉन मैथ्यू साहब की पिक्चर लिख रहे हैं यार, तो यार क्या पिक्चर क्या होगी, अब कौन कर पाएगा वो मालूम नहीं। तो मुझे भी एक म्यूजिक डायरेक्टर, बरसात हो रही थी, सात बंगले में मिला कि सर मेरे लिए एक मुखड़ा और अंतरा लिख देंगे आप। मैंने क्यों, तो मुझे जॉन मैथ्यू को सुनाना है।
1: अच्छा जी,
0: मैं बेचैन हो गया। हमने
1: हाँ
0: कहा भाई ये रास्ता सही है, मैं भी वहां तक जाना चाहता हूँ ना, लेकिन जरिया तो मिलना चाहिए कोई। तो मैंने वो गाना किया और मैं जॉन मैथ्यू साहब के साथ अटैच हो गया और वो पिक्चर मुझे मिली। ये गाना शिखर, सब गाने हो गए और जॉन साहब ने गाना पिक्चराइज कर लिया,
1: अच्छा
0: म्यूजिक बीट पे कुछ भी बोल बाल के पिक्चर करके आ गए और मुझे बुलाया, कहा कि सुधाकर मैंने गाना शूट करके ले आया हूँ। बहुत ही म्यूजिकल आदमी है वो, और बहुत ही, मतलब मैं समझता हूँ कि मेरा अपना आकलन ये है कि मेरी जिंदगी में नंबर वन राज कपूर साहब और बिल्कुल पैरेलल जॉन मैथ्यू साहब, जो उनकी सोच, उनकी डायरेक्शन, उनका सब। तो मैंने कहा सर आप शूट करके आ गए, अभी मैं क्या लिखूंगा। बोले यही तो होना चाहिए, आप तो बोल रहे थे मैं कुछ भी करता हूँ, मैं ये करता हूँ मैं। और उससे पहले मेरी ट्यूनिंग इसलिए हो गई थी कि मेरे पांच गाने तो सेलेक्ट हो चुके थे। अब मैं सोचा ये गाना अगर मेरे हाथ से गया तो फंस जाऊंगा ना। तो मैंने कहा सर एक काम कर सकते हैं आप, गाना मुझे दिखाइए आप। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप देख लीजिए। तो एडिटर मुझे दिखाने लगा, तो मैंने कहा सर एक सजेशन है मेरा। हाँ बोलो। हमने कहा ये शॉट यहाँ से हटा दीजिए आप और इसको यहाँ लगाइए और इसको यहाँ लगाइए।
1: जी
0: तो एडिटर बोला इससे क्या होगा। जॉन सर बोले नहीं ये जो कह रहे हैं पहले वो करो। देखिए इतने बड़े डायरेक्टर और मैं कुछ भी नहीं, देखिए उनका पेशेंस ये था, चलो मैं ऐसे कर लूँगा।

0: देखता हूँ ये क्या करता है। और वो हो गया, और जैसे ही हुआ तो मैंने कहा कि ठीक है अभी गाना हो जाएगा। तो मैंने गाना लिखा, नीले नीले आसमां में तू है, धरती की हलचल में तू है। वो हलचल में क्या था कि एक किसान हल चला रहा है,
1: अच्छा, धरती की हलचल।
0: हलचल, और फर्स्ट शॉट उनका था वो नीला आसमां दिख रहा था, तो धरती की हलचल ये थी है। फिर एक फूलों का था, नीले पीले फूलों में तू है, ऐसा मेरे को सीक्वेंस मिल गया मुखड़े का, और मैंने गाना लिख दिया और ये विजू शाह ने बना दिया।
1: अरे वाह, संगीतकार
0: अब
1: विजु
0: पहली बार
1: शाह।
0: मैं संगीतकार विजू शाह के साथ काम कर रहा था, तो विजू भाई भी बहुत खुश हो गए, बोले यार ये तो अच्छा बनेगा। अब अच्छा बनेगा वो बनते बनते ही बनेगा। जगजीत जी ने जब ये गाना गाया, अब जगजीत सिंह ऐसा गाना गाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। लेकिन वो जॉन मैथ्यू साहब बोल रहे थे कि मेरे लिए बड़े लक्की हैं, क्योंकि उनकी सरफरोश की गज़ल उनकी सुपर डुपर हिट हुई थी।
1: बिल्कुल।
0: तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग फिल्म लाइन में एक शब्द से बहुत डरते हैं, वो होता है लक्की। लकी शब्द किसी ने कह दिया तो हम चुप हो जाते हैं, अनलक्की कह दिया तो डर जाते हैं। तो लक्की सब में है ना,
1: हाँ
0: दावा नहीं कर सकते अपन।
1: जी जी
0: तो उन्होंने कहा नहीं वो मेरे लिए लकी है। मैंने ठीक है,
1: ओहो।
0: मेरे लिए भी लकी हो गए। उनका इस तरह का गाना, मतलब उन्होंने एक दिन मुझे मिले, मैंने कहा सर वो आपका जो गाना है ना, DAV जयपुर स्कूल में प्रेयर बना हुआ है।
1: जी
0: बोले तू एक काम कर, मेरे घर फोन लगा।
1: हाँ।
0: मैंने उनके घर फोन लगाया, मिसेज को, वही गाने की ट्यून बज रही थी। तो ये
1: ओ
0: मेरे लिए एक बहुत बड़ा इनाम था।
1: बिल्कुल,
0: तो ये इस गाने की कहानी है,
1: बहुत
0: बहुत ही
1: सुंदर
0: खूबसूरत गाना था।
1: जी। और जगजीत सिंह की आवाज में
0: जी
1: ये
0: जी
1: गाना बहुत ही गहरा गाना बन
0: और
1: गया।
0: मेरे लिए मतलब वो एक तोहफा है उनका दिया हुआ, ये एक ही गाना उन्होंने मेरा गाया,
1: गाया।
0: उसके बाद कुछ हो नहीं सका।
1: सुधाकर जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे उन बातों को जानना जो हम सपनों में भी नहीं सोच सकते, और कहीं हमें ना पढ़ने को मिलेंगी ये बातें, ना जानने को
0: जी।
1: मिलेंगी। एक गीत तो हम सुनेंगे आपसे, लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी इससे पहले कि हिमेश रेशमिया के साथ आपने बतौर गीतकार बहुत काम किया, काफी गीत लिखे। आप दोनों ने मिलकर म्यूजिकल सिम्फनी भी बनाई थी, तो उसके
0: जी।
1: बारे में भी हम जानना चाहते हैं। और हिमेश जी के साथ काम करने का जो ये अनुभव था, एक सफल अनुभव, ये कैसा था, ये भी हम जानना चाहते हैं।
0: मंदाग्नि जी, आपने एक्चुअल में दुखती रग पे हाथ रख दिया। हिमेश भाई एक तरह से मेरे जिंदगी में उस टाइम पे आए फरिश्ता बन के, जब मैं बहुत ही नर्वस था, बेकार था, और मुझे ये लग रहा था कि अब मुझे बम्बई छोड़नी पड़ेगी।
1: अच्छा।
0: और वो काम करने का अनुभव ऐसा लग रहा था कि मैं एडजस्ट कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि उनकी और मेरी उम्र में बहुत फ़र्क है। मैं उनके पिताजी का दोस्त हूँ, उसकी उम्र मेरे बच्चों जैसी है। लेकिन हम लोगों ने तय किया कि वो मुझे सर बोलेगा, मैं उसे सर बोलूँगा, और हम लोग काम करेंगे।
1: जी
0: उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो गाना जब बनाते हैं ना, खुद गाते हैं, वो गा के गाना बनाते हैं, तो उनको मालूम होता है कि ये शब्द जो जो मैं गा रहा हूँ इसका इम्पैक्ट क्या होगा। और वो ट्यून जो है ना, गा गा के बनाते हैं। वो ट्यून जो है ना, ऐसा नहीं कि वो किसी साज के मोहताज नहीं है,
1: अच्छा,
0: साज उनका मोहताज है।
1: अरे वाह।
0: वो गाना गाते हैं, गुनगुनाते हैं, और इतनी मेहनत करते हैं कि अगर उनको एक शब्द में ऐसा लगे, जैसे एक गाना था, मेरे को एक दिन बोले गाड़ी में, हम लोग जा रहे थे कहीं, वो गाना है बर्दाश्त नहीं कर सकता।
1: अरे वाह।
0: तो ये गीत की कहानी ऐसी है
1: हाँ
0: कि मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे, गाड़ी में बैठे हुए
1: हाँ
0: थे,
1: हाँ
0: तो मेरे को हिमेश भाई बोले सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो।
1: हाँ हाँ
0: मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है यार, ऐसा थोड़ी है कि कोई वर्ड ऐसा हो सकता है जो आज तक आया ही नहीं हो। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है,
1: बर्दाश्त
0: बर्दाश्त। लेकिन ये अनम्यूजिकल है यार, इसको आप बनाओगे कैसे? बोले
1: बिल्कुल।
0: मैं बनाऊंगा। मैंने कहा देखिए हर आदमी बोलता है ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये बर्दाश्त की हद हो गई, ये बर्दाश्त के आगे, बर्दाश्त
1: बिल्कुल,
0: के कितने हैं?
1: बहुत
0: तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता।
1: क्या बात है,
0: फिर
1: बहुत
0: मैंने
1: खूब,
0: दूसरी लाइन की, अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने
1: एकदम
0: तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया, और ये सुपर डुपर हिट गाना हुआ।
1: गजब सर, गजब गाना। क्या तो के साहब और सुनिधि चौहान ने गाया है,
0: बहुत
1: और
0: सुंदर
1: क्या म्यूजिक और क्या वर्डिंग से सर।
0: ये गाना, एक बार सुनाइए आप।
1: तो चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: भाई, ये गीत तो सुधाकर जी हम बहुत बार बजाते हैं, और इस गीत को सुनने के बाद तो एक अलग ही ऊर्जा हम अनाउंसर्स में भी आ जाती है।
1: ये तो ये कभी कभी कोई गीत जो है ना ऐसे भी बनता है। तो हिमेश जी के साथ काम करने का मजा इसी में था, वो इतना इन्वॉल्व होते थे। वो ऐसा नहीं करते थे यार इसको लिख के ले आना, बैठ के गाना बनाते थे। हम एक ही सोफे पे रहते थे, इस कोने पे वो और इस कोने पे मैं। उनको कुछ लगता था तो बोलते थे यार ऐसा कुछ सर बताइए, इसको निभाइए, इसको ऐसा कीजिए। तो वो जो गाइडलाइन होती है ना, वो हिमेश जी के बाद मुझे मिस होता है वो, कि अब जो है ना वैसा माहौल नहीं है।
0: ये तो सर फीलिंग्स का एक मामला है, जहाँ एक संगीतकार और गीतकार बैठकर एक फीलिंग्स के साथ कोई चीज को क्रिएट कर रहे हैं।
1: लेकिन नहीं नहीं ला पाते ना। अभी बहुत दिनों बाद ऐसा होता है, मेरे एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं सतीश देहरा, जो राजस्थान से ही हैं और काफी उन्होंने हिंदी में भी काम किया है। उनके साथ जब मेरी सिटिंग होती है तो बाकायदा रविंदर जैन की थेरी पे भी चलता है, वो उन्हीं का शागिर्द है। तो ढोलक भी होती है, वो बाजे पे होते हैं, मैं लिखता हूँ। जब वो सिटिंग होती है तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। बट ऐसा भी काम करना पड़ता है, वो बोलते हैं व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। तो मैंने व्हाट्सएप पे तो आज तक कोई गाना नहीं भेजा। मैं बोलता हूँ जब आपके पास टाइम हो आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आ जाऊँगा और मैं आपके साथ करूँगा।
0: कितनी बड़ी बात है कि एक गीतकार खुद कह रहा है कि मैं आ जाऊंगा,
1: मैं आ जाऊंगा,
0: दूंगा।
1: वक्त दूंगा तभी तो गाना होगा। अभी हम लोग निखिल कामत के साथ में बैठा था, तो उसमें अगम निगम साहब, वो
0: सोनू निगम जी के पिताजी
1: जी, वो गाना गा रहे हैं। तो बैठे बैठे हमने उनको भी फोन कर लिया, वो भी आ गए। तो आप यकीन कीजिए मुझे कोई शर्म नहीं है। वो करते करते एक सजेशन अगम साहब ने दे दिया कि यार यहाँ कुछ ऐसा होगा ना तो मजा आ जाएगा। हमने मान लिया। तो ये जो सिटिंगों का दौर है इसलिए वो गाने याद रहते हैं। अगर आप इस तरह से सिटिंग करेंगे कि आप मोबाइल पे भेज दीजिए मैं आप पे भेज दूंगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। हिमेश जी के साथ हमेशा मेरे को ये सब गोल्डन मिला कि हमने जितनी भी पिक्चरें की हमारी सब हिट हुई, और हम लोग बैठ के गाना डिस्कस करते थे, हम लोग सजेशन भी देते थे, फिर हम सिंगर भी मिलके तय करते थे कौन गाएगा कौन नहीं गाएगा, वो गाएगा तो कैसा लगेगा, ये गाएगा तो कैसा लगेगा। और फिर हम लोग मतलब स्टूडियोज में भी साथ रहते थे, पूरा दिन हम साथ में रहते थे, कभी वो मुझे छोड़ते नहीं थे। बाद में मेरे पास गाड़ी भी आ गई थी तो बोलते थे इधर खड़ी कर दो, बैठो गाड़ी में। एक ही गाड़ी में मुझे लेके जाते थे, घर पे लाके छोड़ते थे, और मुझे इतना प्यार सम्मान दिया कि मैं बस वो मिस करता हूँ। काम तो चल रहा है, सबके चलते रहते
0: जी,
1: हैं
0: जी, जी।
1: उसमें कोई
0: बहुत
1: बात
0: बड़ी
1: नहीं।
0: बात आपने बताई कि किस तरह से एक गीतकार और संगीतकार और गायक कलाकार, उनके बीच में एक कॉम्बिनेशन, एक केमिस्ट्री होनी चाहिए,
1: जी
0: तब जाकर एक अच्छा गीत रचा जाता है। हम आपके बारे में जब पढ़ रहे थे तो पता चला कि आप जो अपने गीत लिखते नहीं है और वैसे ही बता देते हैं, मतलब कोई डायरी मेंटेन नहीं कर रखी है
1: नहीं
0: आपने,
1: नहीं
0: और
1: नहीं नहीं
0: आपसे कहा जाता है कि गीत लाइए, है ना?
1: हाँ जी
0: तो
1: जी
0: ऐसा कुछ आप नहीं करते हैं, ये कैसे होता है, अचानक गीत आप कैसे रच देते हैं?
1: ये मुझे भी नहीं पता। वो जो अचानक जो मेरे को सूझती है वो शायद ईश्वर का कोई देन है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं कभी ऐसा कागज पे लिख के, अनु मलिक साहब कितनी बार मुझे बोले यार तू कुछ मुखड़े दे मेरे को, शायद उनको लगता होगा कि मैं क्यों नहीं देता, लेकिन मैंने हर बार यही बोला भाई मेरे पास मुखड़े होते ही नहीं, आप कोई सिचुएशन बताओ मैं घर आ जाता हूँ मैं लिख दूंगा।
0: आपके पास कोई अपना रिकॉर्ड नहीं है गीतों का कि ये मेरे गीत हैं, डायरी के पन्ने पलट के अगर हम पढ़ें
1: नहीं
0: आपके
1: नहीं
0: गीतों को?
1: नहीं नहीं अभी मेरे बेटे ने कुछ कलेक्शन किया है,
0: हाँ
1: जो रिकॉर्ड हो गए वो हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो मैंने एक आपको बताया कि लक और अनलक, बस वो उसी पे चलता रहता। एक बार क्या हुआ, मैं मतलब फर्स्ट टाइम प्यारे भाई के

0: काम करने गया था, तो मेरी एक आदत है, मैं हमेशा जहाँ भी जाता हूँ तो ऐसे ही मैं बोलता हूँ, हाँ भाई लिखो, तो वो लिखो जैसा शब्द जो है ना मेरा बहुत फेमस है,
1: हाँ
0: तो या तो म्यूजिक डायरेक्टर लिख लेता है या मेरे साथ मेरा कोई असिस्टेंट होता है
1: वो लिख
0: उसको
1: लेता
0: ले
1: है।
0: जाता हूँ, मैं नहीं लिखता हूँ,
1: अच्छा
0: और मैं अगर लिखता हूँ तो गाना रिकॉर्ड नहीं होता, तो मैं डर के मारे भी नहीं लिखता। हमने
1: अच्छा
0: फायदा क्या इसका है, तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा।
1: अच्छा
0: तो ऐसा है, और इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब वो जो चली आ रही है वो चली आ रही है।
1: हाँ हाँ
0: तो अभी मैं जब वहाँ पे गया तो उन्होंने एक ट्यून सुनाई तो मेरे मुंह से निकल गया लिखो, और मैं घबरा गया एकदम। मैंने कहा लिखो क्या, अभी तो बाहर ही निकाल देंगे। मैंने कहा सर वो मेरे पास कुछ पेन और कागज नहीं है, मैं सक पका गया। और वो इतने ग्रेट हैं, वो भी समझ गए कि इसने बोल दिया। मैंने कहा प्यारे भाई वो मैं लिखता नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा गोरख भाई इसका असिस्टेंट बन जा, तू लिख ले। तो वो गाना गोरख भाई ने लिखा,
1: तो
0: मैंने
1: हाथों
0: लिखा,
1: हाथ आप पंक्ति लिखवा देते हैं,
0: बिल्कुल
1: आपको
0: लिखवा देता।
1: सिचुएशन बतानी पड़ती है, ये
0: हाँ
1: एक्टर है
0: जो
1: ये
0: भी
1: एक्ट्रेस है।
0: सिचुएशन बताएंगे
1: बहुत खूबसूरत।
0: लिखूंगा। और फिर जब रिकॉर्डिंग होती है, मैं आज तक मैंने कोई रिकॉर्डिंग मिस नहीं की है,
1: हर रिकॉर्डिंग में आप
0: हर
1: रहते
0: रिकॉर्डिंग में
1: हैं।
0: मैं रहता हूँ, और रिकॉर्डिंग खोते वक्त भी मेरी चेंजिंग चालू रहती है। मुझे लगता है कि ये मैंने लिखा तो है लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्रिटिक बन के अपना गाना सुनता हूँ रिकॉर्डिंग में, तो कई चीज़ें जो है ना उसमें मेरी इम्प्रूव हो जाती हैं।
1: तो कभी कोई ऐसा गीत आपने लिखा हो जो आपकी इच्छा के विपरीत रहा हो, आपकी इच्छा नहीं रही हो ऐसा गीत लिखने की, लेकिन प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, संगीतकार हैं, वो चाहते हो कि सुधाकर जी इस तरह का गीत लिख कर दें, ऐसी स्थिति कभी आई?
0: ऐसी स्थिति आई थी लेकिन मैंने वो छोड़ दी,
1: नहीं।
0: लिखा नहीं हमने। हमने कहा आप किसी और से लिखवा लीजिए, क्योंकि हम उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो फिर मुझे वो जब मैंने छोड़ा तो मुझे ये लगा कि अगर मैं ऐसे छोड़ूंगा तो लोग मुझे छोड़ देंगे, एक दो बार की तो ठीक है। फिर मैंने अपने आप को तैयार किया कि नहीं, अगर कोई ऐसा भी चाहता है तो उसकी बात को सुनते हुए मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब मुझे कर लेना चाहिए। तो उसका जो है ना ये रहा कि जैसे कि मैंने एक पिक्चर में गीत लिखे, जैनियों की एक पिक्चर थी, अब उसमें जब मैं गीत लिख रहा था तो मुझे उस फिल्म में कहानी को गीत में पिरोना था, तो वो मुझे बताते थे कि भाई मेरे को ऐसा लाइन चाहिए, मेरे को ये लाइन ऐसी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, वो डिक्टेट करते थे बाकायदा जो डायरेक्टर थे हमारे।
1: अच्छा
0: तो अब उसमें मैं बंध गया कि मुझे क्या करना है, बट मैंने वो भी लिखा और वो बहुत लोगों को पसंद भी आया। तो ऐसा होता तो है कि लोग जो है ना कुछ और लिखवाना चाहते हैं, लेकिन मोस्टली मैं ऐसे काम को छोड़ देता हूँ कि भाई अगर मेरे से नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा तो काम करके क्या फ़ायदा होगा, कुछ भी फ़ायदा नहीं है।
1: तो एक गीत सुन लिया जाए आपकी पसंद का।
0: जी मेरी पसंद का एक गीत आप मुझे सुना दीजिए, ये है आपका तेरी चुनरी बन्नो लाखों की।

0: आपने 5,000 गाने लगभग लिखे और रिलीज भी हो गए, 1500-1600 एल्बम, और राजस्थानी में आपने 36 फिल्में लिखी हैं अब तक।
1: जी जी
0: इसके अलावा हरियाणवी फिल्में लिख चुके हैं आप 4-5, भोजपुरी में भी आपने 3-4 फिल्में लिखी हैं। तो इतना काम आपने किया, जैसा कि आपने बताया भी था कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहा, मैंने फिल्में भी डायरेक्टर की, और साथ में आपने भजन भी लिखे हैं।
1: जी
0: इतने सारे काम सुधाकर शर्मा कैसे कर लेते हैं, और इनके अनुभव क्या रहे इतने सारे चीजों को एक साथ लेकर चलने के?
1: होता क्या है कि हम खुद एक मुसाफिर हैं और हमारी मंजिल जो है ना वो बड़ी दूर है, मतलब ठिकाने मिलते हैं, मंजिल नहीं मिलती। मंजिल तो आज भी नहीं मिली
0: जी
1: लेकिन ये एक ऐसा विधा है कि इसमें आप जो है ना, जैसे कि जब राजस्थानी जो फिल्मों में मैंने गीत लिखे, मैं हरियाणा का हूँ और राजस्थानी फिल्मों में मेरे सुपर डुपर हिट गाने हैं। वीना कैसेट कंपनी हमारे केसी मालू जी की है,
0: बिल्कुल,
1: वो अभी भी उनका मैं काम कर रहा हूँ, वो साल में मेरे से एक दो काम हमेशा कराते हैं और बहुत सम्मान भी देते हैं और बड़ा मज़ा आता है उनके साथ काम करने में। तो जो अलग अलग भाषाओं का रंग है वो अगर आपने समझ लिया तो भाव तो सब में एक ही होता है, भाव कोई अलग नहीं होता।
0: जी।
1: रही भजन की बात, तो चूंकि मेरी फैमिली, मेरे पिताजी, जब से मैंने देखा है कि वो हमेशा रामायण पढ़ते हैं और पता नहीं कितनी बार वो पढ़ चुके हैं। भजन के बारे में मैं एक खास बात आपको बताऊं कि मेरे बेटे का एक म्यूजिक कंपनी है ओडली के नाम से,
0: ओडली,
1: ओडली
0: अच्छा, यहाँ पर
1: म्यूजिक,
0: भी चुनरिया आई,
1: चुनरिया अंडरस्टूड है।
0: हाँ जी।
1: तो मैंने सोचा कि मैं अपनी इस कंपनी के लिए रामायण करूं, और ये रामायण करने का बीड़ा जब मैंने उठाया तो मैंने इसमें सिंगर चुने, अमित कुमार।
0: अरे वाह।
1: अब अमित कुमार को सिंगर जब मैंने लिया तो अमित कुमार खुद मेरे को बोले कि यार मेरे से तुम रामायण कैसे गवा रहे हो, मैं तो कोई भजन भी नहीं गाया तो मैं रामायण गाऊंगा कैसे। तो हमने कहा सर आप गा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, आप एक बार मन तो बनाओ। तो अमित जी मतलब लगभग 3-4 महीने हम लोग ऐसे ही जब भी मिलते कोई बात होती और वो होते, आखिर एक दिन तैयार हुए।
0: अच्छा।
1: और हम लोग घर पे गए तो मैंने एक ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर लिया जो 25 साल रविंद्र जैन के साथ जिसने काम किया, जिसने गाया भी बहुत है और राजस्थान का सुपरहिट है, सतीश देहरा नाम है उसका,
0: जिनका जिक्र अभी आप
1: जिक्र
0: कर रहे
1: किया।
0: थे।
1: तो मैंने कहा यार सतीश मेरे लिए इतना काम कर दो यार, उनको इसलिए लिया कि मैंने कहा तुम गाओ और उनको सिखाओ, वो आपको सुन के गाएंगे, सिर्फ ट्यून नहीं, सतीश जी पूरी पूरी चौपाई गा के उनको बताते हैं,
0: अच्छा,
1: कि भाई आप ऐसे गा दीजिए, और अमित जी पूरा उसको फॉलो कर लेते हैं। पहले पहले 2-3 सेशन हमारे मुश्किल गए और अभी तो जो है ना वो बिल्कुल, कभी हम सोचते भी हैं ना, जैसे सतीश जी कई बार बोल देते हैं थोड़ा इसको चेंज कर सकते हैं, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं तुम एक बार और बताओ मैं यही गाऊंगा। और ये जब सिलसिला जब चालू हुआ तो सच्ची बात ये थी कि मैं बहुत डरा हुआ था। और मंदाकिनी जी मैं एक अपनी एक कमजोरी बताता हूँ, मैं कभी किसी बात को छुपाता नहीं हूँ, जो है वो है।
0: जी जी।
1: डरा हुआ मैं इसलिए था कि हाँ तो हो गई, गा भी रहे हैं, अब इनको मैं दूं क्या,
0: हाँ।
1: पैसा तो मैंने कहा कि मैं उनको प्यार से बाबा बोलता हूँ कभी कभी, मैंने कहा बाबा बात ऐसी है, मजा तो आ रहा है, सब कुछ ठीक है, तो मैंने कहा वो मेरे पास थोड़ा सा एक डिसाइड हो जाए कि मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं, मैं क्या दे सकता हूँ, बोले मैं 1 रुपया नहीं लूंगा तेरे से। तो मेरे को यकीन नहीं हुआ
0: बात
1: कि अमित कुमार मेरे को बोल रहा है कि मैं 1 रुपया
0: नहीं
1: लूंगा।
0: वाह, अद्भुत,
1: ये बहुत ही अद्भुत, और ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साहब किशोर दा ने ऊपर से मुझे

0: आशीर्वाद दिया कि मैं नहीं हूं तो भी उस घर में तेरा सम्मान है। मैंने कह दिया और उन्होंने कहा कि मैं एक रुपये नहीं लूंगा। अब मैंने कहा कि अगर ये एक रुपया नहीं लेंगे तो ठीक है, जो भी होगा। तो मैंने ना पहले सुंदरकांड शुरू किया। हमने कहा अगर इनका मूड ऑफ हो गया और ये बोले कि बस हो गया, क्योंकि पैसा नहीं है ना। सुंदरकांड होने के बाद उन्होंने खुद बोला अब क्या। हमने कहा अब शुरू से कर लेते हैं। और ऐसा करते करते वो 1.5 साल से रेगुलर गा रहे हैं और 3-4 साल और लगेंगे। ऐसा कोई सिंगर या कोई आदमी, मैं खुद भी किसी के लिए नहीं कर सकता कि एक आदमी रेगुलर 5-6 साल मेरे लिए काम करेगा और वो एक पैसा नहीं लेगा। जो मेरे पास होगा मैं करूंगा।
1: हाँ,
0: लेकिन मेरी औकात ही क्या है, मैं क्या करूंगा, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा।
1: उनकी महानता देखिए आप, अमित,
0: लेकिन उनकी ग्रेटनेस देखिए। हर महीने मुझे 6 से 7 वो डेट देते हैं और जब भी वो आते हैं, बड़े टाइम पे आते हैं, जब गाते गाते उनको लगता है कि अब मैं थक गया तो वहीं से बोलते हैं जय श्री राम। मैंने कहा चलो जय श्री राम। लेकिन इतना लंबा इतना समय देना, और वो भी एक मतलब अब धीरे धीरे उनको इंटरेस्ट आ रहा है, ये बात अलग है। लेकिन जो कमर्शियल बातें जो आजकल लोगों में आ गई हैं, लेकिन अमित जी के लिए हैट्स ऑफ। और मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ कि बस वो खुश रहें, स्वस्थ रहें एकदम। ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था कि ये जवाब आएगा। मैंने कहा ज्यादा ज्यादा वो बोलेंगे जो देना है दे देना।
1: जी जी।
0: लेकिन उन्होंने क्लियर किया
1: कि मैं कुछ नहीं लेने
0: वाला। कुछ नहीं लेने
1: वाला। बहुत बड़ी बात सर।
0: तो ये बहुत बड़ी बात है।
1: उन्होंने आपकी उस भावना को समझा जिस भावना से आप वो कार्यक्रम कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरी तो आंखें नम हो गई है और मैं भावुक हो गई हूँ। एक गाना पहले सुन लेते हैं।
0: एक गाना हम लोग सुनते हैं। मैं इस गाने की कहानी पे आऊंगा, आप गाना सुनाइए। तूने जिंदगी में आके जिंदगी जिंदगी बदल दी।

0: ये गाना ऐसा है कि मैं और हिमेश भाई बैठे थे घर में और बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा हिमेश भाई आज ऐसा गाना मैं लिखूंगा, ज्यादातर वो ट्यून बनाते हैं पहले और फिर उसको लिखवाते हैं। मैंने कहा यार आज ट्यून मत बताना मेरे को, मैं गाना लिखूंगा उसकी आप ट्यून बनाना। तो हंसने लगे, बोले ठीक है लिखो। मैं लेकिन आज मेरे को ये भी मत बोलना कि ये गाना कमर्शियल नहीं है, मैं कमर्शियल गाना नहीं लिखूंगा आज, जो मेरे दिल में आएगी वो लिखूंगा। कहने लगे ठीक है लिखो। हकीकत ये है कि जब मैं सोचा कि क्या लिखूं, तो मैंने कहा मैं अपने जैसा गाना नहीं लिखता,
1: मतलब जो सुधाकर जी की पहचान है वैसा गाना,
0: वैसा गाना नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा फिर। तो मैंने गुलजार साहब को याद किया कि गुलजार साहब जैसा लिखना चाहिए, बट ये सोचने बात अलग है, लिखना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो मैंने एक गाना लिखा, उसमें मैंने जिंदगी को प्ले किया, तूने जिंदगी में आके जिंदगी जिंदगी बदल दी। ऐसा करते करते ये गाना जब लिख लिया मैंने, तो हिमेश भाई ने बना भी दिया। तो हिमेश भाई बोले कि सर लेकिन ये गाना आज की डेट में कौन लेगा। हमने कहा कुछ चीजें ऐसी भी होनी चाहिए, कोई ले ना ले, आप मेरे लिए बनाओ ना ये गाना। तो खैर गाना बन गया। अब ये सिचुएशन निकल गई हमराज में,
1: बहुत सुंदर
0: कि ऐसा एक गाना चाहिए। तो मैंने कहा हिमेश भाई इनको सुना दो ये गाना, और ये गाना हमारा लग गया। और ये गाने की जो असल कहानी है वो ये है कि ये गाना मुझे बेस्ट लिरिक राइटर के लिए फिल्म फेयर में नॉमिनेशन तक लेके गया। और हकीकत बात और मैं बताऊं कि ये गाना जिस राइटर को मैंने सोच के लिखा था, उस साल का अवार्ड उस राइटर को मिला, मुझे नहीं मिला। गुलजार साहब को उस साल का मिला। तो कोई बात नहीं, वो तो हमारे एक लीजेंड है भाई, लेकिन इस गाने की उपज उनकी वजह से हुई, हालांकि उन जैसा इसमें कुछ भी नहीं है।
1: आपने उनको एक प्रेरणा स्रोत माना कि मैं उनको ध्यान में रखकर अपनी एक रचना गढ़ता।
0: वो हमेशा कुछ अलग ही करते हैं ना।
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: मैंने जिंदगी को प्ले करके सोचा कि मैं भी कुछ करूं।
1: बहुत सुंदर और वो हो गया। सुधाकर जी, गीत लिखने का क्या तरीका बदला है जब सोशल मीडिया आ गया है, फिल्मी गानों के प्रति हमारा टेस्ट बदल गया है, खासतौर से युवा लोगों को, क्या ऐसे में गीतकार प्रभावित हुआ है?
0: बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर एक तलवार ये होती है कि कुछ ऐसा करो कि एकदम हुक लाइन पहले होनी चाहिए, उसके इर्द गिर्द गाना लिखा जाता है। और उस गाने को लिखने के चक्कर में गीतकार का अपना थॉट मर गया है कि वो जो कहना चाहता है कहाँ कहे फिर। और अभी तो लोग बोलते हैं AI से करा लेंगे, इससे करा लेंगे, उससे करा लेंगे, लोग करा भी रहे हैं।
1: अच्छा,
0: लेकिन बट AI जो है ना आपको रास्ता दिखा सकता है, चल नहीं सकता, चलना आप ही को पड़ेगा। वो इमोशन नहीं ला पाएगा,
1: सबसे बड़ी बात
0: वो कहानी नहीं ला पाएगा। टेक्निकली वो साउंड कर देगा, लेकिन वैसा नहीं कर सकता वो।
1: तो एक गीतकार के सामने ये समस्या आ गई, क्योंकि युवा डायरेक्टर भी आ रहे हैं, फिल्मों के निर्माता नए नए आ रहे हैं, नए नए तरह की फिल्में, अच्छी फिल्में भी आ रही हैं, बहुत नए सब्जेक्ट के साथ आ रही हैं। ऐसे में गीतों का जो फ्लेवर है वो भी बदला है, तो गीतकार को भी इसके लिए अपने आप को बदलना होगा। आप क्या इस बदलाव के लिए तैयार रहते हैं हर समय?
0: मैं बिल्कुल तैयार हूँ, तभी आज तक काम कर रहा हूँ। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक मेरा अड़चन ये आती है कि बदलाव के लिए तो हम तैयार हैं, फोड़ पने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो बदलाव हम थोड़ा संभाल के कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप जो है ना उसमें कुछ भी इस तरह के वर्ड डाल दें कि उस वो वर्ड डालने से हिट हो जाएंगे और बाद में पब्लिक उसको जूते मारे, उसका कोई मतलब नहीं होता। अभी पुराने राइटरों ने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए और उन्होंने वो बात भी कही जो आज के फोड़ पने में कह रहे हैं, उन्होंने भी कहा
1: बहुत प्यारे तरीके,
0: लेकिन बड़े प्यार से कहा, एक अंदाज से कहा, क्लासिकल कहा। अब आप उस चीज को नंगा कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। ये सब चीजें जो है ना वो बहुत काउंट करती हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैंने जो किया है मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के सुन सकता हूँ, मेरी आने वाली पीढ़ी बोल सकती है कि मेरे दादा ने या मेरे नाना ने ये काम किया है।
1: हमारा आखिरी सवाल है आपसे, पांच पीढ़ियों के साथ आपने काम किया है और ये अनुभव तो आपने हमारे साथ साझा किया, जो नए गीतकार या युवा लड़के लड़कियां इस लाइन में आना चाहते हैं, बतौर गीतकार, बतौर गायक कलाकार या संगीतकार के तौर पर भी, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मंदाकिनी जी, ये आपने धर्म संकट में डाल दिया, क्योंकि मैं किसी को संदेश देने लायक की स्थिति में नहीं हूं, मैं तो खुद ही संदेश लेता रहता हूं। बट मैं उनको एक ही बात शेयर करूंगा, एक तो पेशेंस रखें, दूसरा वो अपने आप को इतना बुद्धिमान न समझें कि जो उन्होंने लिख दिया
1: वो कालजयी हो गया।
0: हाँ, वो ऐसा नहीं हो सकता है।
1: जी, जी।
0: दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं, रिलेशन
1: जी
0: देखिए, आज हिमेश जी तक मैं जो पहुंचा, उनके फादर मेरे दोस्त थे, उनके साथ मैं काम करता था और उन्होंने हिमेश जी के साथ मुझे लगाया,

0: तो ये जो पेशेंस है आपके पास, वो ऐसे ही नहीं आ गया, उसको आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं सुनील कौशिक, वो मेरे को एक दिन बोले कि यार जब भी हम लोग मिलते हैं तू मेरे को नमस्ते करता है यार, मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बोला भाई क्यों, मैं नमस्ते करता हूँ तो अच्छा नहीं लगता तो नहीं करूँगा। बोले नहीं नहीं नहीं नहीं वो बात नहीं है, काम नहीं हो पाता यार। हमने सर काम जब किस्मत में होगा तब हो जाएगा, लेकिन संबंध तो बने होने चाहिए। तो लगभग मतलब 12-13 साल के बाद एक दिन उनका फोन आया, बोले यार एक गाना है आ जा। और छोटा भीम के लिए उन्होंने मुझसे गाने लिखवाए, और एक गाना ही नहीं, समझ लो कि मैंने फिर 3 साल तक कंटिन्यूस उनके साथ काम किया। तो जो मैंने 12-13 साल नमस्ते की हो गई ना वसूल।
1: बिल्कुल
0: मैं एक बात जरूर और कहना चाहूंगा, होता क्या है नए लोगों में, जैसे कि मेरे को कोई नया म्यूजिक डायरेक्टर मिलता है तो मिलते ही वो उसकी तमन्ना होती है सर मेरे लिए कुछ काम बताइए ना। भाई जो मेरे साथ 20 साल से लगे हुए हैं उनके साथ काम करूं, तू तो अभी अभी मिला है,
1: बिल्कुल
0: तुम पहले 2-4 साल मेरे साथ रहो तो सही। तो आप आइए काम कीजिए, हैव पेशेंस, काम आज नहीं कल नहीं परसों, साल 2 साल। मुझे पहली कामयाबी मैं अगर आपको बताऊं तो आप समझिए कि मैं अगर 73 को ना भी मानूं, आया गया ये हुआ वो हुआ, मेरा पहला गाना जो रिकॉर्ड हुआ वो रिकॉर्ड हुआ था मेरा 82 में।
1: जी 73 से 82 तक आपने इंतजार किया।
0: इंतजार किया, फिर 82 से 97 तक इंतजार किया,
1: दूसरे गाने का?
0: दूसरे गाने का नहीं, कोई गाना बाहर तो आए।
1: ओहो
0: 97 में गाना बाहर आया, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की। इतना धीरज, आप
1: पेशेंस
0: डिप्रेशन में ना चले जाएं, आपका दिमाग खराब ना हो जाए, और आप ये ना सोच लें कि अब मेरा कुछ नहीं होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है।
1: जी
0: एक दिन की बात है कि मैं घर से निकला था और मैं बहुत परेशान था। परेशान ये था कि मैं नवरात्रे रखता हूँ
1: अच्छा
0: तो कंजके बिठाते हैं उसमें, और उसमें कोई 300-350 रुपये का खर्चा आता था। ये स्ट्रगल टाइम की एक बात बता रहा हूँ। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, व्रत तो रख लेता हूँ, कंजके वंजके नहीं बिठाएंगे, पैसा नहीं है। तो मैं घर से ऐसे ही चला ये सोच के कि एक दुकान वाला है मेरी पहचान का, उसको बोलूँगा भाई मेरे पास अभी पैसा नहीं है तो तू मेरे को दे दे, तो देवी का काम है, अगर उसने दे दिया तो ठीक है। ऐसा चलते चलते मैं थक गया, एक स्टूडियो था क्लासिक, वहाँ पे चाय वाय आराम से मिलती है, वहाँ गया। मैं घुस रहा हूँ और मेरे जेब में फ़ोन बज रहा है, और मुझे फ़ोन करता हुआ रिकॉर्डिस्ट बाहर आ रहा है। और मैं अरे यार मैं तेरे को भी फोन लगा रहा हूँ तू उठा नहीं रहा। मैंने कहा यार मैं निकाल रहा हूँ तब तक तू आ गया। वह जल्दी आ, अंदर आ, अंदर आ, अंदर गया। बोले साहब ये गुजरात से आए हैं, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बोले यार इनके कुछ गाने ठीक करने हैं, कुमार शानू गाएगा। ठीक कर देता हूँ। अब मैं वो गाने ठीक करने के चक्कर में बैठ गया, 3 गाने थे मैंने ठीक कर दिए। वो बोले सर आप रुक जाइए अभी दादा आ ही रहे हैं तो आप रहिए। तो दादा आ गए, तो दादा ने बोले तूने लिखा है? मैंने नहीं, मैंने लिखा नहीं है, मैंने थोड़ा सा सुधारा है, सब मस्त है। उन गाने गा दिए, चले गए। जब वो चले गए तो उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया, उसमें 3100 रुपये थे। तो ईश्वर पे भरोसा रखो और अपने काम पे भरोसा रखो
1: बिल्कुल।
0: तो कुछ ना
1: आपसे
0: कुछ
1: बात
0: होगा।
1: करके बहुत संबल मिला है सुधाकर जी,
0: जी
1: और मुझे लगता है जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो भी इस बात से सबक सीखेंगे कि किसी भी काम को करने के पीछे कितनी मेहनत और मशक्कत होती है। अब आपके आने का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपने अपना इतना अमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला,
0: जी
1: विविध भारती के स्टूडियो आप आए, अपनी बातें, अपनी जिंदगी के वो पल, वो लम्हात हमारे साथ आपने साझा किए हैं। इसके लिए आपका हम तहे दिल से सुधाकर जी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
0: धन्यवाद मैं आपका करता हूं और विविध भारती का करता हूं, जिसे हरियाणा के खेतों से निकाल के आपके स्टूडियो तक ले आया, क्योंकि मेरा माध्यम आकाशवाणी
1: जी
0: विविध भारती यही रहा है, यहीं
1: जी
0: से मेरी शुरुआत थी।
1: जी
0: और आज मैं उस मुकाम पे हूँ कि जहाँ मैंने अपने उस्तादों को, बड़े बड़ों के मैंने देखे, बाहर सब फोटो लगे हुए हैं, हसरत साहब का फोटो लगा, इतने सब, ये कभी मेरे ख्वाबों में थे, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि इन सब से मैं मिला हूँ।
1: जी और हम खुशकिस्मत है कि हम आपसे मिले हैं। आप विविध
0: धन्यवाद
1: भारती के स्टूडियो में आए, जिनके गानों को
0: जी।
1: हम बोलते हैं कि चलिए गीतकार हैं सुधाकर शर्मा, संगीतकार हैं हिमेश रेशमिया,
0: जी
1: आज वो सुधाकर जी हमारे सामने बैठे हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पल है सुधाकर जी।
0: जी और श्रोताओं को मेरा नमस्कार
1: जी तो बॉम्बे

0: टॉकीज में अभी आप सुन रहे थे जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से हमारी ये महत्वपूर्ण बातचीत, और अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, नमस्कार।
1: ये था जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहायक भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

दोस्तों, आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का हफलोंग केंद्र है। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 5 बज चुके हैं। समय हो चला है आज की पहली सभा को समेटने का। आप सभी सुनने वाले श्रोताओं से फिर होगी मुलाकात शाम की दूसरी सभा यानी 6 बजे। तब तक के लिए मुझे मनाली को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

नमस्कार श्रोताओं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार शाम के 6 बज चुके हैं। इसी के साथ मैं शर्मिला सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए आरंभ करती हूँ आज की हमारी दूसरी सभा को।

श्रोताओं, दूसरी सभा को आरंभ करने से पहले चलिए अब आपको देते हैं जानकारी आज की हमारी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी समय में यानी कि 6:05 पर पेश करेंगे मार कार्यक्रम के अंतर्गत मार आधुनिक गीत। गायक कलाकार होंगे लाल सनहिम रियंग सते और उनके साथी। तत्पश्चात जेमी कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे जेमी भक्ति गीत इंगा लुले न्यू में और उनके साथियों की आवाज में। 6:25 का 6:45 पर आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से आप सुन पाएंगे आंचलिक बातुरी। तत्पश्चात स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों को जारी रखते हुए आप सुन पाएंगे कुछ डिमासा लोकगीत। गायक कलाकार होंगे चिंतामणि बोडो और उनके साथी। समय रहेगा 7:00 का। 7:20 पर आप सुन पाएंगे कार्बी भक्ति गीत। आज कार्बी कार्यक्रम के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे कुछ कार्बी

श्रोताओ, 9 बजे आप सुन पाएंगे आपका पसंदीदा फोन इन कार्यक्रम हेलो हाफलोंग, जिसे प्रस्तुत करेंगे संयुक्ता दत्ता। 9:30 पर आप चित्रगीत का आनंद ले पाएंगे, जो कि आज की हमारी सभा की आखिरी पेशकश रहेगी। तो श्रोताओं, ये थी आज की हमारी दूसरी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। चलिए अब आनंद लेते हैं कुछ मार आधुनिक गीतों का। गायक कलाकार होंगे लाल सन हिम रियांग साते और उनके साथी।

श्रोताओं, गायक कलाकार लालसन हिम रियांगसाटी और उनके साथियों की आवाज़ में आप सुन रहे थे मार भक्ति गीत, क्षमा कीजिए मार आधुनिक गीत। इसी गीत के साथ ही हमारा आज का मार कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। चलिए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। जेमी भक्ति गीत गायक कलाकार होंगे इंगाव लुलेन्यू में और उनके साथी।

नुसरत, गायक कलाकार इंगावलुले न्यूमी और उनके साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे जेमी भक्ति गीत। इसी गीत के साथ ही हमारा आज का जेमी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। चलिए अब सुनते हैं आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से आंचलिक बातुरी।

小花镇，上山耶，上山耶，上山耶，小鸭公，母爱，小鸭公。

Barbagini, Barsi, Bazu, Dagon, Do.

श्रोताओं, चिंतामणि बोर्डो की आवाज़ में आप सुन रहे थे डिमासा लोकगीत। इसी गीत के साथ ही हमारा आज का डिमासा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। चलिए अब सुनते हैं कार्बी कार्यक्रम में कुछ कार्बी भक्ति गीत। गायक कलाकार होंगे वेडिया मलिक भी और उनके साथ ही

श्रोताओं, गायक कलाकार वेडिया मलिक पी और उनके साथियों की आवाज़ में आप सुन रहे थे कार्बी भक्ति गीत। इसी गीत के साथ ही हमारा आज का कार्बी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों के अंतर्गत चलिए सुनते हैं अंतिम पेशकश कुकी पारंपरिक गीत की। गायक कलाकार होंगे लाल खोलियन चोंगलॉय और उनके साथी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लाल खोलियन चंगलॉय और उनके साथियों के गाए कुछ कुकी पारंपरिक गीत। इसी गीत के साथ ही हमारा आज का कुकी कार्यक्रम और साथ ही इस सभा के स्थानीय भाषाओं का कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। आइए अब सुनते हैं किसान श्रोताओं का कार्यक्रम किसान वाणी। आज का विषय रहेगा बेल वाली सब्जियों की खेती।

0: श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी हाफलोंग के कृषि कार्यक्रम किसान वाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ मेलेडी
1: और मैं हूँ जिदित। मेरी तरफ से भी आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: तो श्रोताओं, आज की किसान वाणी की इस कड़ी में हम आपके साथ बांटने जा रहे हैं लताओं में होने वाली सब्जियों की खेती के बारे में जानकारी। साथ में हम आपको सुनवाएंगे एक प्यारा सा स्थानीय लोकगीत। तो श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं लता वर्गीय सब्जियों की खेती के बारे में, जिनमें लौकी, कद्दू, खीरा, करेला, तोरई, परवल और सेम जैसी महत्वपूर्ण फसलें शामिल हैं। ये सब्जियां न केवल हमारे भोजन को पौष्टिक बनाती हैं, बल्कि किसानों के लिए अच्छी आय का भी एक स्रोत है। उचित जलवायु, उन्नत किस्मों का चयन, संतुलित पोषण प्रबंधन और सही देखभाल के माध्यम से इन फसलों से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं लता वर्गीय सब्जियों की सफल खेती आप किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं जलवायु और मिट्टी के बारे में। लतादार सब्जियां जैसे कि लौकी, कद्दू, खीरा, तोरई और सेम की सफल खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इन फसलों की अच्छी वृद्धि, फूल आने के और फल बनने के लिए 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान आदर्श माना जाता है। अधिक ठंड, पाला या फिर ज्यादा वर्षा की स्थिति में पौधों की वृद्धि प्रभावित हो सकती है और उत्पादन में कमी आ सकती है। इसलिए इन फसलों की बुआई ऐसे समय पर करनी चाहिए जब मौसम अनुकूल हो और पाले का खतरा ना हो। पर्याप्त धूप, उचित नमी मिलने पर पौधे तेजी से बढ़ते हैं और अधिक संख्या में फूल और फल उत्पन्न करते हैं। मिट्टी की दृष्टि से लतादार सब्जियों के लिए अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ दोमट या फिर बालुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। ऐसी मिट्टी में पौधों की जड़ें आसानी से फैलती हैं और उन्हें आवश्यक पोषक तत्व, वायु और नमी पर्याप्त मात्रा में मिलती है। मिट्टी का पीएच मान 6 से लेकर 7.5 के बीच होना चाहिए, क्योंकि इस स्तर पर पौधे पोषक तत्वों को आसानी से ग्रहण कर पाते हैं।

0: का मुख्य उद्देश्य मिट्टी को भुरभुरी, नरम और खरपतवार रहित बनाना होता है ताकि बीजों का अंकुरण अच्छी तरह हो सके और पौधों की जड़ें गहराई तक फैलकर आवश्यक पोषक तत्वों और नमी को आसानी से प्राप्त कर सके। इसलिए सबसे पहले खेत को 2 से 3 बार गहरी जुताई करनी चाहिए। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और बाद की जुताइयां देशी हल या फिर कल्टीवेटर से की जा सकती है। हर जुताई के बाद पाटा लगाकर मिट्टी को समतल और भुरभुरी बना लेना चाहिए। इससे मिट्टी में वायु संचार बढ़ता है और पौधों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होता है। अंतिम जुताई के समय सड़े हुए गोबर की खाद या कंपोस्ट खेत में समान रूप से मिलानी चाहिए। जैविक खाद मिट्टी की उर्वरता और जल धारण क्षमता को बढ़ाती है और पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराती है। इसके बाद खेत को समतल करके फसल को और पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराती है। इसके बाद खेत को समतल करके फसल और किस्म के अनुसार मेड़, नालियां या गड्ढे तैयार कर लिए जाते हैं। लतादार सब्जियों की खेती में सामान्य तौर पर मेड़ों या उठी हुई क्यारियों पर बुआई की जाती है, जिससे जल निकासी अच्छी बनी रहती है और पौधों की जड़ों में पानी का ठहराव नहीं होता है। पौधों और कतारों के बीच में उचित दूरी रखना बहुत जरूरी है ताकि बेलों को फैलने और बढ़ने के लिए पर्याप्त स्थान मिल सके।
1: श्रोताओं, खाद और उर्वरक प्रबंधन के बारे में बात करें तो लतादार सब्जियों की अच्छी वृद्धि, अधिक फूल आने और अच्छी गुणवत्ता वाले फलों के उत्पादन के लिए संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरक का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। पौधों को उनकी वृद्धि के अलग अलग चरणों में अलग अलग पोषक तत्वों की जरूरत होती है, इसीलिए खेत की तैयारी के समय और फसल की वृद्धि के दौरान उचित मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध कराना चाहिए। खेत की अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टर लगभग 20 से 25 टन अच्छी तरह सरी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट मिट्टी में मिला देनी चाहिए। जैविक खाद मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, उसकी जल धारण क्षमता में सुधार करने और सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके उपयोग से मिट्टी लंबे समय तक उपजाऊ बनी रहती है और पौधों की जड़ों का विकास भी बेहतर होता है। रासायनिक उर्वरकों के रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन पौधों की पत्तियों और बेलों की वृद्धि को बढ़ावा देती है और पौधों को हरा भरा बनाए रखती है। फास्फोरस जड़ों के विकास, फूल बनने और फल लगने की प्रक्रिया में सहायक होता है, जबकि पोटाश फलों की गुणवत्ता, आकार और चमक को बढ़ाने के साथ साथ पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करता है। नाइट्रोजन की पूरी मात्रा एक साथ देने के बजाय इसे 2 या 3 भागों में बांटकर फसल की वृद्धि के दौरान देना अधिक लाभदायक होता है, क्योंकि इससे पौधों को लगातार पोषक मिलता रहता है और उर्वरकों का उपयोग अधिक प्रभावी होता है। इसके अतिरिक्त जैव उर्वरकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग भी लतादार सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होता है। अगर मिट्टी में किसी सूक्ष्म तत्व जैसे जिंक, बोरन या सल्फर की कमी हो तो पौधों की वृद्धि प्रभावित हो सकती है और फलन कम हो सकता है। इसीलिए मिट्टी परीक्षण के आधार पर आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग करना चाहिए। संतुलित और वैज्ञानिक ढंग से खाद और उर्वरकों का उपयोग करने से पौधों की वृद्धि अच्छी होती है, उत्पादन बढ़ता है और किसानों को अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। अब बातें करते हैं उन्नत किस्मों का चयन कैसे करते हैं। लतादार सब्जियों की खेती में अधिक उत्पादन, बेहतर गुणवत्ता और रोग और कीटों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए उन्नत किस्मों का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी फसल की सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि किसान ने अपने जलवायु, मिट्टी और बाजार की मांग के अनुसार किस किस्म का चयन किया है। उन्नत किस्मों में सामान्य किस्मों की तुलना में अधिक उत्पादन क्षमता होती है और ये कई प्रमुख रोगों और कीटों के प्रति अधिक सहनशील होती है। इसीलिए किसानों को हमेशा प्रमाणित और गुणवत्तापूर्ण बीजों का ही उपयोग करना चाहिए ताकि अंकुरण अच्छा हो और पौधों की वृद्धि समान रूप से हो सके। लतादार सब्जियों की अलग अलग फसलों के लिए अनेक उन्नत किस्में उपलब्ध हैं। लौकी की खेती के लिए पूसा नवीन, पूसा संतुष्टि और अर्का बहा।

0: जैसी किस्में लोकप्रिय है। करेले के लिए पूसा दो मौसमी और पूसा विशेष, जबकि खरी के लिए पूसा उदय और पूसा संयोग जैसी किस्में अच्छी मानी जाती है। इसी प्रकार तोरई, कद्दू और सेम की भी कई उन्नत किस्में उपलब्ध है जो अधिक उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। स्थानीय कृषि वैज्ञानिकों या कृषि विभाग की सलाह के अनुसार अपने क्षेत्र के लिए उपयुक्त किस्म का चयन करना अधिक लाभदायक होता है। उन्नत किस्मों के चयन से न केवल उत्पादन में वृद्धि होती है बल्कि फलों का आकार, रंग, स्वाद और गुणवत्ता भी बेहतर होती है, जिससे बाजार में उनकी मांग और कीमत अधिक मिलती है। इसके अलावा कम अवधि में तैयार होने वाली किस्मों का चयन करने से किसान एक वर्ष में अधिक फसल चक्र अपनाकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। इसीलिए लतादार सब्जियों की फसल खेती के लिए उचित और उन्नत किस्मों का चयन एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है।
1: श्रोताओं, आप जान लेते हैं बीज की मात्रा और बुआई के बारे में। लतादार सब्जियों की सफल खेती के लिए उचित मात्रा में बीज का उपयोग और सही विधि से बुआई करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर बीज की मात्रा कम या ज्यादा हो या फिर बुआई सही तरीके से ना की जाए तो पौधों की संख्या, वृद्धि और उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए किसानों को हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले, स्वस्थ और प्रमाणित बीजों का ही चयन करना चाहिए। प्रमाणित बीजों का अंकुरण प्रतिशत अधिक होता है, जिससे पौधे की संख्या समान रहती है और फसल का विकास बेहतर होता है। लतादार सब्जियों के लिए बीज की मात्रा फसल और किस्म के अनुसार अलग-अलग होती है। जैसे कि लौकी, करेला और तोरई जैसी फसलों में प्रति हेक्टेयर लगभग 3 से 5 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है, जबकि खीरा और कद्दू जैसी फसलों की बीज की मात्रा कुछ कम या अधिक हो सकती है। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना लाभदायक होता है, क्योंकि इससे बीज जनित रोगों से सुरक्षा मिलती है और अंकुरण क्षमता में वृद्धि होती है। बीजों को 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बोया जाता है, जिससे वे आसानी से अंकुरित हो सके और पौधों की प्रारंभिक वृद्धि अच्छी हो। लतादार सब्जियों की बुआई मेड़ों, क्यारियों या फिर गड्ढों में की जाती है और पौधों और कतारों के बीच पर्याप्त दूरी रखी जाती है, ताकि बेलों को फैलने और बढ़ने के लिए पर्याप्त स्थान मिल सके। उचित दूरी बनाए रखने से पौधों को पर्याप्त धूप, वायु मिलती है, जिससे रोगों का प्रकोप कम होता है, उत्पादन में वृद्धि होती है। बुआई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए, ताकि मिट्टी में पर्याप्त नमी बनी रहे और बीजों का अंकुरण समान रूप से हो सके। अगर बुआई के समय मिट्टी में पर्याप्त नमी हो तो अंकुरण जल्दी और अच्छी तरह होता है। लतादार सब्जियों की खेती में सही समय पर और वैज्ञानिक विधि से की गई बुआई पौधों की स्वस्थ वृद्धि और अधिक उत्पादन की आधारशिला मानी जाती है। अब बातें करते हैं सहारा देने का प्रबंधन। लतादार सब्जियों की खेती में बेलों को उचित सहारा देना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इन फसलों की बेलें जमीन पर फैलने के बजाय ऊपर की ओर बढ़ने पर अधिक स्वस्थ और उत्पादक होती है। लौकी, करेला, तोरई, खीरा और सेम जैसी लतादार सब्जियों में सहारा देने की व्यवस्था फसल की वृद्धि और उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर बेलों को उचित सहारा नहीं दिया जाता तो वे जमीन पर फैल जाते हैं और फलों के सड़ने, कीट और रोगों के प्रकोप और फिर उत्पादन में कमी आने की संभावना बढ़ जाती है। सहारा देने के लिए बांस, लकड़ी के खंभों, रस्सियों और तारों की सहायता से मचान तैयार किया जाता है। खेत में निश्चित दूरी पर मजबूत बांस या फिर खंभे गाड़कर उनके ऊपर तार या रस्सियां बांधी जाती हैं, जिन पर बेलों को चढ़ाया जाता है। जैसे जैसे पौधे बढ़ते हैं, बेलों को सावधानी पूर्वक मचान या सहारे की ओर मोड़ दिया जाता है, जिससे वे आसानी से ऊपर की ओर फैल सके। इस व्यवस्था से पौधों को पर्याप्त धूप और वायु मिलती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बेहतर होती है और पौधों का विकास तेजी से होता है। मचान पद्धति अपनाने से फल जमीन के संपर्क में नहीं आते, जिससे उनमें सड़न या दाग धब्बे कम लगते हैं और उनकी गुणवत्ता बेहतर बनी रहती है। इसके अलावा खेत में कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव करना भी आसान हो जाता है और फलों की तुड़ाई में कम समय और श्रम लगता है। अच्छी तरह से प्रबंधित सहारा व्यवस्था से फलों का आकार और रंग और गुणवत्ता बेहतर होता है और उत्पादन में भी वृद्धि होती है। इसलिए लतादार सब्जियों की व्यावसायिक खेती में

सहारा देने का उचित प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कृषि तकनीक माना जाता है, जो किसानों को अधिक उपज और बेहतर आर्थिक लाभ प्राप्त करने में सहायता करता है। लतादार सब्जियों की खेती में खरपतवार नियंत्रण एक बहुत ही जरूरी कृषि कार्य है, क्योंकि खरपतवार फसल के साथ पानी, पोषक तत्व, सूर्य के प्रकाश और स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। अगर इन्हें समय पर नियंत्रित नहीं किया जाए तो पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है और उत्पादन में कमी आती है। फसल की प्रारंभिक अवस्था में खरपतवारों का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उस समय पौधे छोटे और कमजोर होते हैं और पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है। खरपतवार न केवल पौधों की वृद्धि को रोकते हैं, बल्कि कई प्रकार के कीटों और रोगों के आश्रय स्थल के रूप में भी काम करते हैं, जिससे फसल को अतिरिक्त नुकसान पहुंच सकता है। लतादार सब्जियों की खेत में बुवाई के लगभग 20 से 25 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करनी चाहिए और जरूरत के अनुसार 15 से 20 दिनों के अंतराल पर दूसरी और तीसरी निराई भी करनी चाहिए। निराई गुड़ाई करने से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं और मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है, जिससे जड़ों तक वायु का संचार बेहतर होता है। इसके साथ ही मिट्टी में नमी का संरक्षण भी होता है और पौधों की जड़ें और ज्यादा मजबूत बनती है। बारिश के मौसम में खरपतवारों की वृद्धि ज्यादा होती है, इसीलिए इस मौसम में विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। मचान पद्धति अपनाने वाली लतादार सब्जियों में खरपतवार नियंत्रण अपेक्षाकृत आसान होता है, क्योंकि बेलों के ऊपर चढ़ जाने से खेत की देखभाल और सफाई में सुविधा होती है। जैविक खेती करने वाले किसान खेत में सूखी घास या पुआल या फिर पत्तियों की मल्चिंग का उपयोग करके भी खरपतवारों की वृद्धि को कम कर सकते हैं। मल्चिंग से न केवल खरपतवार कम उगते हैं, बल्कि मिट्टी में नमी भी लंबे समय तक बनी रहती है और पौधों की वृद्धि बेहतर होती है। इस प्रकार समय पर और उचित तरीके से किए गए खरपतवार प्रबंधन लतादार सब्जियों की स्वस्थ वृद्धि, अधिक उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो श्रोताओं, इस बातचीत को देते हैं एक छोटा सा विराम और चलिए अब आपको सुनवाते हैं एक स्थानीय लोकगीत।

0: तो श्रोताओं, इस लोकगीत के बाद जारी रखते हैं आज की चर्चा को।
1: अब बातें करते हैं कीट और रोग प्रबंधन के बारे में। लतादार सब्जियों की खेती में अलग अलग प्रकार के कीट और रोग फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे उत्पादन और गुणवत्ता दोनों प्रभावित होते हैं। अगर इनका समय पर नियंत्रण ना किया जाए तो किसानों को भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है। इसीलिए फसल की नियमित निगरानी करना और कीट और रोगों के प्रारंभिक लक्ष्य दिखाई देने पर तुरंत उचित प्रबंधन उपाय अपनाना आवश्यक होता है। स्वस्थ और प्रमाणित बीजों का उपयोग, खेत की स्वच्छता और संतुलित उर्वरक प्रबंधन अपनाने से कई समस्याओं को प्रारंभिक स्तर पर भी रोका जा सकता है। लतादार सब्जियों में फल मक्खी, माहू, सफेद मक्खी और पत्ती खाने वाले कीट प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। फल मक्खी फलों में अंडे देती है, जिससे फल सड़ने लगते हैं और उनकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। माहू और सफेद मक्खी पौधों की पत्तियों और कोमल भागों का रस चूसते हैं, जिससे पौधे कमजोर हो जाते हैं और उनकी वृद्धि रुक जाती है। इसके अलावा ये कीट कई प्रकार के विषाणुजनित रोगों को फैलाने का कार्य भी करते हैं। इन कीटों के नियंत्रण के लिए खेत की नियमित निगरानी, प्रभावित फलों और पौधों के भागों को हटाना और स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक है। रोगों में चूर्णी फाफुंदी, मोजेक रोग, डाउनी मेल्ड्यू और जरसरन प्रमुख है। चूर्णी फाफुंदी के कारण पत्तियों पर सफेद चूर्ण जैसा पदार्थ दिखाई देता है, जिससे पत्तियां सूखने लगती है और पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है। मोज़ेक रोग में पत्तियों का रंग पीला हरा हो जाता है और उनका आकार विकृत हो जाता है। डाउनी मिल्ड्यू रोग में पत्तियों पर पीले धब्बे बनते हैं, जो बाद में भूरे रंग के हो जाते हैं। वही अधिक नमी और जल भराव की स्थिति में जरसरन की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिससे पौधे धीरे धीरे मुरझाकर सूख जाते हैं। कीट और रोगों की रोकथाम के लिए फसल चक्र अपनाना, खेत को खरपतवार मुक्त रखना, उचित दूरी पर पौधों की बुवाई करना और खेत में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। रोगग्रस्त पौधों और फलों को तुरंत हटाकर नष्ट कर देना चाहिए, ताकि संक्रमण अन्य पौधों तक ना फैल सके। नियमित निरीक्षण और वैज्ञानिक प्रबंधन उपायों को अपनाकर लतादार सब्जियों की फसल को कीटों और रोगों से सुरक्षित रखा जा सकता है, जिससे अधिक उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता वाली उपज प्राप्त होती है। और अब बातें करते हैं कटाई और उपज। लतादार सब्जियों की खेती में उचित समय पर कटाई या तुराई करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे फलों की गुणवत्ता, स्वाद और बाजार मूल्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। सामान्य तौर पर इन सब्जियों की तुराई तब की जाती है जब फल पूरी तरह विकसित हो जाए, लेकिन अभी कोमल और ताजे हो। अधिक देर तक पौधों पर फल लगे रहने से वे कठोर हो सकते हैं, उनका स्वाद कम हो सकता है और बाजार में उनकी मांग भी घट सकती है। इसीलिए किसानों को फलों की परिपक्वता की अवस्था को ध्यान में रखते हुए समय समय पर तुराई करते रहना चाहिए। लतादार सब्जियों जैसे लौकी, करेला, खीरा, तुरई और सेम की तुराई सामान्य तौर पर 2 से 3 दिनों के अंतराल पर की जाती है। नियमित तुराई करने से पौधों में नए फूल और फल बनने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे कुल उत्पादन में वृद्धि होती है। तुराई करते समय फलों की सावधानीपूर्वक हाथ से या उपयुक्त उपकरण की सहायता से काटना चाहिए, ताकि बेलों और अन्य फलों को नुकसान ना पहुंचे। विशेष रूप से मचन पद्धति में उगाई गई फसलों की तुराई करना अधिक आसान और सुविधाजनक होता है। कटाई के बाद फलों को आकार, गुणवत्ता और बाजार की मांग के अनुसार छांटकर अलग किया जाता है। खराब, रोगग्रस्त या क्षतिग्रस्त फलों को अलग कर देना चाहिए, ताकि अच्छी गुणवत्ता वाले फलों का मूल्य प्रभावित ना हो। फलों को साफ और छायादार स्थान पर रखकर पैकिंग और परिवहन करना चाहिए, जिससे उनकी ताजगी और गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। उचित देखभाल, संतुलित पोषक, समय पर सिंचाई और कीट और रोग प्रबंधन अपनाने पर लतादार सब्जियों से किसानों को अच्छी उपज और अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार सही समय पर और सावधानीपूर्वक की गई कटाई लतादार सब्जियों की खेती की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
0: तो श्रोताओं, हमने आपके साथ लता वर्गीय सब्जियों की खेती के बारे में जानकारी बांटी। इसी के साथ आज की किसान वाणी को हम यहीं पर समेटना चाहेंगे,
1: लेकिन जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे कार्यक्रम को सुनना चाहते हैं तो हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब में भी फॉलो कर सकते हैं और साथ ही सब्सक्राइब कर सकते हैं और कार्यक्रम को आप सुन भी सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, इसी के साथ हम आप सभी से इजाजत लेना चाहेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी किसान वाणी की अगली कड़ी के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं मलेडी
1: और मैं जिदित
0: आप सभी से अनुमति चाहते हैं।
1: नमस्कार।

आपकी गीत दोस्तों एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 पीएम। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें एसएमएस या फिर व्हाट्सएप के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। एसएमएस या फिर व्हाट्सएप करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। चलिए अब सुनते हैं टीचर्स कार्यक्रम का पूर्ण प्रसारण।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त अंकिता और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हाफ लॉन्ग फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारा खास कार्यक्रम टीचर्स प्रोग्राम। श्रोताओं, पिछले शनिवार हमने अपने विशेष कार्यक्रम में रोल ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल्स इन शेपिंग द फ्यूचर विषय पर चर्चा शुरू की थी। उस बातचीत में हमने जाना कि रेजिडेंशियल स्कूल्स का डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट बच्चों को रेस्पॉन्सिबल और इंडिपेंडेंट बनने में कैसे मदद करता है, लेकिन उस कार्यक्रम को हम समय के पाबंदी के कारण पूरा नहीं कर पाए थे। इसलिए आज मैं फिर से एक बार मौजूद हूँ आपके साथ इसी कार्यक्रम के दूसरे भाग को लेकर। आज हम उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए ये समझने की कोशिश करेंगे कि रेजिडेंशियल स्कूल्स स्टूडेंट्स में लीडरशिप, टीम वर्क और इमोशनल स्ट्रेंथ कैसे डेवलप करते हैं। हमारे साथ फिर से मौजूद है पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय हाफलोंग के आदरणीय प्राचार्य श्री प्रवीण चौधरी जी। तो आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सर, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो जैसे कि सर हमारे इस कार्यक्रम के पहले भाग पर काफी बातचीत की है कि इस रेजिडेंशियल स्कूल्स में टीम वर्क होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई जाती है। अभी मैं थोड़ा बात करना चाहूंगी एकेडमिक के बारे में। तो सर, एक रेजिडेंशियल सेटअप में जो टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच जो कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन होता है
1: जी,
0: क्या वो एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करता है?
1: जी बिल्कुल, डेफिनेटली ये करेगा ही, क्योंकि घर पर कोई भी परिवार बच्चे को सभी विषयों की शिक्षा नहीं दे सकता। माता पिता किसी एक विषय के बारे में बच्चे को बता सकते हैं, लेकिन आज का जो युग है वो एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी का युग है कि बच्चे को हर विषय की जानकारी होनी चाहिए। घर पे हर विषय के शिक्षक या हर विषय के गुरु मिल भी सकते हैं, ना भी नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन एक संस्था, एक रेजिडेंशियल सेटअप जहाँ पे हर विषय में क्वालिफाइड स्टाफ है और जो नेशनल लेवल पे कम्पीट करके आया है, एक चयन प्रक्रिया है, उसको पास करके आगे आया है, तो वो जब उस बच्चे को गुरु के रूप में शिक्षा देता है तो बच्चा उनसे बहुत कुछ सीखता है, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, वो सब्जेक्ट्स हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, आर्ट हो, म्यूजिक हो या स्पोर्ट्स हो। और बच्चा उन शिक्षकों के बीच में जब रहता है तो जब भी उसको डाउट होता है किसी भी क्षेत्र में, उसको लगता है कि यहाँ पे मुझे ज़रूरत है, ये डाउट मेरा रह गया है, वो जब मर्जी चाहे अपने टीचर से उस डाउट को क्लियर कर सकता है। क्योंकि ये आवासीय विद्यालय का सेटअप और इसकी व्यवस्था, इसका करिकुलम ही इस तरीके से बनाया गया है कि मॉर्निंग में फोरनून आवर्स में जो है वो रेगुलर क्लासेस चलती हैं, उसके बाद आफ्टरनून में रेमेडियल क्लासेस होती हैं, रेमेडियल क्लासेस में डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं जिसमें बच्चों के डाउट्स जो हैं, कोई भी संशय किसी भी विषय में जो हैं वो क्लियर किए जाते हैं। हर सब्जेक्ट्स की, हर विषय की अलग अलग दिनों में रेमेडियल क्लासेस वहाँ पर लगाई गई हैं। इन एडिशन इवनिंग में बच्चे की सेल्फ स्टडीज़ भी ऑर्गेनाइज की जाती हैं, तो सेल्फ स्टडी में बच्चा जब खुद पढ़ता है, उन चीज़ों का अभ्यास करता है, जो भी चुनौतियाँ, चैलेंजेस या जो भी कठिनाइयाँ उसके किसी भी विषय में उसे आती हैं, अगले दिन वो संबंधित शिक्षक से उन डाउट्स को क्लियर करता है, और इस तरह से बच्चा जो है जिस भी सब्जेक्ट में पिछड़ रहा है वो उस सब्जेक्ट को कवर करता है। इन एडिशन टीचर्स का एक जो ग्रुप है, एक टीम है टीचर्स की, वो भी बच्चों को हर पहलू पे उसके रिजल्ट को एनालाइज कर रही है कि कौन सा बच्चा पढ़ाई में कैसा है, कौन सा बच्चा किस क्षेत्र में कमजोर पड़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो टीचर है वो भी बच्चे को रेमेडियल फीडबैक देते हैं, उसको रेमेडियल मेजर्स देते हैं और अभ्यास करवाते हैं, जिससे कि बच्चा जो है जिस क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है उसमें वो रिकवर कर लेता है। और जब भी उसकी परीक्षा होती है, बोर्ड की परीक्षा हो या एनुअल एग्जाम्स हो, तब वो बच्चा फिर अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण होता है।
0: जी सर, ये बहुत अच्छा लगा है सुन के हमें। सर, अभी मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि सर, आपने हमें पहले बताया कि बच्चे वहाँ पे एडमिशन लेते हैं छठी कक्षा में, तो उसके बाद एक ऐसा टाइम आता है एडोलेसेंट एज का, तो एडोलेसेंट एज में इमोशनल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है।
1: जी जी,
0: तो रेजिडेंशियल स्कूल्स में इमोशनल वेलबींग को कैसे हैंडल किया जाता है?
1: जी, ये आज के इस आधुनिक युग और ये मॉडर्न जनरेशन, जैसे हम अल्फा बीटा इस जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो ये इमोशनल वेलबींग बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है
0: जी सर,
1: और जिसे हम समझते हैं कि आज की जनरेशन में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे मानसिक रूप से बहुत ही कमज़ोर होते जा रहे हैं। वो छोटी छोटी भी चैलेंजेस जो लाइफ के आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, उनको झेल नहीं सकते और बच्चे जाने अनजाने में बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं।
0: जी सर,
1: तो ये हम देख रहे हैं कि जो आने वाली हमारी युवा पीढ़ी है, जो नए बच्चे हैं, उनको इमोशनल सपोर्ट देना ये हमारी जिम्मेदारी है। और आवासीय विद्यालय की मैं बात करूं तो यहाँ पे ये बहुत ही एक डिफाइंड मैकेनिज्म होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे जितने भी शिक्षक हैं उन सभी को गाइडेंस और काउंसलिंग का ट्रेनिंग करवाई जाती है। हमारे विभाग की तरफ से भी समय समय पर एक एक करके सभी विषय अध्यापकों और अन्य टीम मेंबर्स की ट्रेनिंग करवाई जा रही है कि किस तरह से ये आने वाली जनरेशन्स को और इनके इश्यूज को हैंडल करना है, क्योंकि हमारे ज़माने में जो इश्यूज थे वो कुछ अलग तरीके से के थे और आज जो इश्यूज हैं आज की जनरेशन के वो बहुत ही एडवांस हैं, बहुत टेक्निकल हैं और इनको एक चैनलाइज तरीके से, मैं कहूँगा एक मैकेनाइज तरीके से हैंडल करना होगा ताकि हम इस जनरेशन को, इसको, इसकी एनर्जी को प्रॉपरली चैनलाइज कर सकें। तो इसीलिए हमारे पास ट्रेंड टीचर्स की टीम है, काउंसलर्स हैं, नर्स हैं। इन बिटवीन सरकार ने ये भी प्रोविजन रखा है कि हम बाहर से भी काउंसलर हायर करके बुलाते हैं, उनके भी काउंसलिंग सेशंस करवाते हैं। अभी अगर मैं अपने विद्यालय की बात करूं तो हमारे साथ जैसे अंजनी चौधरी जी, जो स्टेट गवर्नमेंट ने अपने दीमा हसाओ के डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स में काउंसलर के रूप में उनको सेवाएँ देने के लिए नियुक्त किया था, तो हमने उनसे भी बहुत सारे सेशंस अपने बच्चों के लिए गाइडेंस और काउंसलिंग के करवाए, जिसमें बच्चों के अलग अलग एरियाज को उनसे फीडबैक लिया गया और उनकी समस्याओं का समाधान किया गया। साथ ही हमारे जो इस जिले का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं, काउंसलर्स हैं, एडोल्सेंट जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी हम बुलाते हैं और बच्चों के साथ इंटरेक्शन करवाते हैं। एक एनजीओ आरओ की टीम है जो कि बच्चों के जो ग्रोइंग एज में बच्चे हैं उनको गुड टच, बैड टच, एडोल्सेंस एज में क्या क्या इश्यूज हैं और कैसे हैंडल करने हैं, इस तरह की एजुकेशन देते हैं। तो हमने उनसे भी टाई अप किया और उनके भी कई सेशंस यहां पे अरेंज करवाए। तो इस तरह से कुल मिलाकर हमारी टीम, काउंसलर्स और ये जो रिसोर्स पर्सन हम बाहर से बुलाते हैं, ये सारे मिलकर बच्चों के इमोशनल जो इश्यूज होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है बच्चों के साथ, गर्ल्स बॉयज को इकट्ठे बिठाकर उनको इंडिविजुअली, ताकि बच्चा कभी भी ये फील ना करे कि वो आइसोलेटेड है, वो अकेला है और ये इशू जो है इसको वो समाज में, सोसाइटी में किसी से डिस्कस नहीं कर सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे को एक खुला प्लेटफॉर्म दिया जाता है, एक मंच पे लाया जाता है, उसको स्पेस दी जाती है ताकि वो बच्चा किसी ना किसी के साथ अपनी चीज़ें शेयर कर सके और टाइमली उनका समाधान किया जा सके। तो इस तरह से हम कई बच्चों का इस तरह के सवाल और उनकी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम भी हुए हैं।
0: जी सर, ये बहुत अच्छा लगा है, बच्चों का इमोशनल वेलबींग को भी ध्यान में रखा जाता है वहाँ पे। सर, अभी मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि आपके नज़रिए से रेजिडेंशियल स्कूलिंग का जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमारे स्टूडेंट्स का कैरियर और कैरेक्टर बिल्डिंग पर क्या होता है?
1: जी ज़रूर, ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं चाहूँगा कि सभी श्रोताओं तक ये मैसेज भी पहुँचे। रेजिडेंशियल स्कूल में देखिए कि हमारे पास हर क्षेत्र का एक एक्सपर्टाइज रिसोर्स पर्सन है
0: जी।
1: वो अपने अपने तरीके से, जो साइंटिफिक तरीके हैं, जो प्रैक्टिकल तरीके हैं, एक्सपीरियंस के हिसाब से उनसे बच्चों को टैकल करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और बच्चों को मोटिवेट और साथ में गाइड भी करते हैं
0: जी।
1: बच्चा पढ़ाई के साथ साथ जिस भी क्षेत्र में उसकी रुचि है उसमें वो अपना करियर बना सकता है, अपना भविष्य निखार सकता है। अगर वो खेल में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है उसको खेल के मौके दिए जाते हैं। हर क्षेत्र में हमारे यहाँ कॉम्पिटिशन्स करवाए जाते हैं और अलग अलग उसके लेवल्स हैं। क्लस्टर लेवल पे गेम्स होती हैं, क्लस्टर लेवल पे आर्ट के कंपटीशन होते हैं, क्लस्टर लेवल पे साइंस के कंपटीशंस होते हैं, फिर वहाँ से अगर क्वालिफाई करके तो रीजनल लेवल तक ले जाया जाता है और रीजनल लेवल में क्वालिफाई कर जाएं तो इनको नेशनल लेवल तक भी ले जाया जाता है। जैसे अपने विद्यालय की मैं बात करूँ तो यहाँ पर खेल लेवल तक लास्ट ईयर हम एक बच्चे को नेशनल लेवल तक लेके गए, SGFI तक, टेबल टेनिस में, क्योंकि बच्चे का रुझान उस तरफ है और उस बच्चे को हमने अपने विद्यालय में नहीं उसकी रुचि के हिसाब से तैयार किया, बाहर से कोचेज बुलाए, ट्रेनिंग दी और रेगुलर उसको प्रैक्टिस करवाई, जिससे कि वो बच्चा इस लेवल तक पहुंच पाया। इसी तरह से आर्ट के क्षेत्र में भी हमारे कई मॉडल्स सेलेक्ट होके नेशनल लेवल तक प्रेजेंट किए। परीक्षा पे चर्चा प्रगति मैदान दिल्ली में जब एक्सपोजर एग्जीबिशन किया गया तो हमारे मॉडल्स वहाँ भी प्रेजेंट किए गए, एग्जीबिट किए गए। अगर हम म्यूज़िक के और परफॉर्मिंग आर्ट में देखें तो हमारे बच्चे परफॉर्मिंग आर्ट में, चाहे वो माइम हो या सोलो परफॉर्मेंस हो या ग्रुप परफॉर्मेंस हो, उसमें भी रीजनल लेवल तक बच्चे पार्टिसिपेट किए। और एकेडमिक्स में अगर बात करूं तो नेशनल हमने लास्ट ईयर के बोर्ड के रिजल्ट में पीएम श्री स्कूल जेएनवी सोनटीला जेएनवी हाफ लॉन्ग जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में थर्ड पोजिशन पर रहा है।
0: जी,
1: तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है और बहुत गर्व का विषय है हमारे लिए कि बच्चे अपनी रुचि के हिसाब से, अपने टैलेंट, अपने पोटेंशियल के हिसाब से उस क्षेत्र को चुन रहे हैं और उसमें अपने भविष्य को तराश रहे हैं। जब बच्चा इसमें अपना भविष्य बनाएगा तो वो निश्चित ही एक सफल इंसान और एक सफल नागरिक के रूप में उभर कर आएगा। अभी करंट सेशन में हमारे जो 12th सेशन अभी चल रहा है, जिसका अभी कुछ एग्जाम्स बाकी हैं,
0: जी सर,
1: तो इसकी बात करूं तो हमारे अभी 3 बच्चे जेई मेंस का एग्जाम क्लियर कर चुके हैं और उनका परसेंटाइल अच्छा है, एक सम्मानजनक परसेंटाइल है और हम आशा कर रहे हैं कि 12th पास आउट होने के बाद उस बच्चे को NIT में एक अच्छे ट्रेड में एडमिशन मिल जाएगा। तो बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी बाहर के सपोर्ट के, वो बच्चा स्कूल लेवल पर ही इतनी उपलब्धि अगर हासिल कर रहा है तो ये एक आवासीय विद्यालय के लिए गौरव और ये उसके उपलब्धि है।
0: जी सर,
1: साथ ही लॉन्ग टर्म में मैं देखूं तो मैं आप सभी से, श्रोताओं से ये साझा करना चाहूँगा कि अगर हम लॉन्ग टर्म में पूरे जीवन की बात करें तो आवासीय विद्यालय में जो चीज़ बच्चे में आती है जो बाहर रहकर शायद ना आ पाए, वो है मानसिक स्तर पे मजबूती। मेंटली ये बच्चा बहुत स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि जो बच्चा 6ठी में आकर अपनी चीज़ें खुद जिम्मेदारी से संभाल रहा है, उन चीज़ों को खुद करने सीख गया, डिसिप्लिन में रहने सीख गया और अपने आसपास की चुनौतियां जो हैं, देखिए एक आवासीय विद्यालय में आना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है।
0: जी।
1: सीनियर्स के बीच में रहना, सीनियर्स का डर होना, उनकी रिस्पेक्ट होना, जहां माँ बाप नहीं है वो बच्चा अकेला है, उस माहौल में खुद जीना और सर्वाइव करना, ये अपने आप में एक चैलेंज है। और जब बच्चा इन सारी परिस्थितियों से होकर अकेला गुजरता है, अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने एज ग्रुप के साथ, अपने जूनियर्स के साथ और सीनियर के साथ, तो कहीं ना कहीं वो जिंदगी के बहुत बारे जीत जो है वो यहीं पे ही हासिल कर लेता है। अब भविष्य में उसके आगे कोई भी चुनौती आ जाए, वो बच्चा उस चुनौती का बहुत निडरता से सामना कर सकता है और मैं समझूंगा कि मानसिक स्तर पर मेंटली रूप से बहुत ही स्ट्रांग बन जाता है, इन कंपैरिजन टू उन बच्चों के जो घर में रहकर माता पिता के उनके पास पल रहे हैं और उनकी देख रेख में, जहां जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा छूट जाती है।
0: जी सर, बहुत अच्छा लगा आपने जो बताया है कि बच्चों ने जो जो हासिल किया है, जेईई मेन एग्जाम्स का सफल हुआ है उस एग्जाम पे, फिर नेशनल लेवल्स पे जाके भी उन्होंने जीता है, बहुत अच्छा लगा वो सब सुन के और आशा करती हूँ और भी बच्चे अपना ऐसे करियर पे आगे बढ़ते जाए वहाँ से।
1: जी
0: सर, और हमें बहुत अच्छा लगा अभी आपसे इस टॉपिक पे बात करते हुए, आपने बहुत अच्छा से हमारे श्रोताओं को और हमें इसके बारे में समझाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपने आपका कीमती समय भी हमें दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: जी श्रोताओं, अब हमारे कार्यक्रम के अंत में हम पहुंच चुके हैं। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने जाना कि रेजिडेंशियल स्कूल केवल एकेडमिक नॉलेज ही नहीं देते, बल्कि विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक मूल्यों का भी विकास करते हैं, जो उनके उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव बनते हैं। हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय हाफलोंग के आदरणीय प्राचार्य महोदय का, जिन्होंने अपने बहुमूल्य विचार हमारे साथ साझा किए। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम से मुझे यानी अंकिता को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए आकाशवाणी हाफलोंग फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 MHz पर। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे टीचर्स कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। चलिए अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनते हैं समाचार संध्या।

0: समाचार संध्या के साथ मैं रवीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
1: आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के साणद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साणद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
2: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं। आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि साणद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए,

0: संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सारण संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमरीका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
0: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
1: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रूपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
3: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
1: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने कहा किन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। तोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्हास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमरीका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खामेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 पराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे समाचार संध्या जो रिले किए गए थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। चलिए अब आपका मनपसंद फोन इन कार्यक्रम हेलो हाफलोंग सुनते हैं। और आज की इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रहेंगी संयुक्ता दत्ता।

0: हेलो दोस्तों, नमस्कार। आकाशवाणी के हफलंग केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका पसंदीदा प्रोग्राम हेलो हफलंग को लेकर इस हफ्ते हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त संजुक्ता। हर हफ्ते की तरह आज भी आपसे बातें करेंगे, आपके पसंदीदा गाने की फरमाइश पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म करते हुए देखते हैं आज का पहला कॉलर कौन है। हेलो हफलंग।
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: जी जी इंद्रभान जी,
1: मैं ड्यूटी परेड में हूँ मैडम, और यहाँ पर नर्सरी के बीच में हूँ, जंगली नर्सरी के बीच में। कल हमारे तरफ पानी गिरा मैडम, और आज बादल किया है और धूप भी किया है, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है मैडम, तो ऐसा मौसम है यहाँ चल रहा है, और हो सकता है शाम को या रात को पानी गिरेगा।
0: फिर तो मौसम की गर्माहट से आपको थोड़ी सी राहत मिली ही होगी।
1: जी मैडम, थोड़ा सा राहत मिला है।
0: जी जी, नर्सरी में आप क्या लगाते हैं?
1: मैडम ये जंगली नर्सरी है मैडम, ये लोग कोयला निकालने के लिए लगाए हैं, कहीं की कोयला निकालना रहता है ना
0: जी,
1: तो लगा दिए यहाँ पर पेड़ पौधे को कि कोयला निकालना है यहाँ पर।
0: जी जी जी, तो आज आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: आज मैं सुनूंगा मैडम पुराना पिक्चर बरसात का है ना, जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बाल माँ तेरा इंतजार है।
0: जी
1: गायिका लता मंगेशकर।
0: जी जी जी,
1: गीत आपको केंद्र निर्देशक साहब को, पूरे भारत श्रोता को, आकाशवाणी हापलंग में जुड़े सभी लोगों को, आकाशवाणी हापलंग में जुड़े सभी उद्घोषक भाई बहनों को, स्टाफ कर्मचारियों को, हेलो एक्टर रेडियो फरमाइश ग्रुप में जुड़े श्रोताओं को, पूरे भारत श्रोता को डिडेट कराऊ मैडम।
0: जी जी जी, जरूर आपको सुनवा रहे हैं ये खूबसूरत गीत।
1: गीत अभी को डिडेट किया हूँ, धन्यवाद
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आप हर एक गीत को मेरे साथ सुनते हैं और मुझे डेडिकेट भी करते हैं, मुझे अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो हफलोंग, नमस्ते
1: नमस्ते मैम।
0: जी, आप कैसे हैं
1: मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, बढ़िया। दुकान पर बैठ के काम कर रहा हूँ और
0: जी?
1: आपका कार्यक्रम सुनने के लिए फोन लगाया है। मैंने
0: जी, पर आप नाम तो बताइए।
1: मैं रमेश प्रजापति, ग्राम बाया, तहसील रहेटी, जिला सीहोर, एमपी से बोल रहा हूँ मैं।
0: जी, और अभी काम के वक्त आपने हमें वक्त निकाल के फोन भी कर लिया, तो
1: जी,
0: आपका फरमाइश भी हमें सुना दीजिए
1: कोरा कागज फिल्म का नाम है,
0: जी। और कौन सा गीत,
1: रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे।
0: खूबसूरत गीत आपने पसंद किया है
1: जी,
0: जी।
1: और कुछ मित्रों को याद करूं क्या।
0: जरूर कीजिए।
1: भगवान सिंह परमार है, पूरन वर्मा जी है, गजराज लोधी जी, केसरी सिंह राजपूत है, मांगीलाल चंदेल है, प्रेम सिंह सिसोदिया है, और धर्मवीर है दिल्ली से, राकेश जी है शिमला से, शिवा है, पूनम जी है कानपुर से, विमल भस्माकारी है, अमल भस्माकारी है, गोल्डी जी है, क्या है, अमर सिंह साहू, रमेश पात्रे, और नागालैंड से है रक्कू बिले मेहता और तनुश्री है बिटिया जी,
0: हम
1: और आप सभी को भी।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और
1: जी
0: हम आपको सुनवा रहे हैं आपका पसंद किया हुआ ये खूबसूरत गीत। धन्यवाद।

0: हेलो हफलोंग,
1: जी नमस्ते जी,
0: नमस्ते। आप कौन बोल रहे हैं
1: मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बचोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से। जी
0: जी? बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: बताना चाहेंगे, फिल्म का नाम है अर्पण और गाने के बोले लिखने वाले ने लिख डाला मिलन के साथ जुदाई। कैसे
0: जी, बहुत ही
1: हैं
0: उम्दा
1: आप?
0: गाना आपने पसंद किया है।
1: हाँ जी, बहुत ही अच्छा गाना है, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में ये गाना।
0: जी,
1: जी, हमारे यहाँ पे बरसात हो चुकी है, आपके यहाँ कैसा है मौसम? जी,
0: हमारे यहाँ तो हर रोज थोड़ी थोड़ी बरसात होती है, फिर धूप भी निकलती है।
1: आपके यहाँ पर पहाड़ी इलाका है ना?
0: हाँ जी,
1: हाँ जी, हमारे यहाँ पे मैदानी इलाका है, और अभी मतलब आपको बताओ, सोयाबीन की फसल लगाई है हमने।
0: बहुत ही अच्छा फसल आपका खेत में हो ये हम आशा करेंगे,
1: जी
0: और आपको भरपूर इसका लाभ भी मिले। तो बारिश के मौसम में सोयाबीन का उपज कैसा होता है?
1: जी बारिश के मौसम में सोयाबीन का उपज बहुत ही अच्छा होता है, और आपको बताऊं, जैसे कि नदियां, कुएं और तालाब और ट्यूबवेल है हमारे यहाँ पे सिंचाई के लिए, जब इनमें भरपूर पानी भरा जाता है तो फिर लहसुन, गेहूं और मटर की फसल लगाई जाती है हमारे यहाँ पर। तो
0: जी
1: साथ में आकाशवाणी मोबाइल ऐप पर सुनते हैं, अच्छे अच्छे प्रोग्राम और जानकारी से भरे हुए हमें कार्यक्रम सुनने को मिलते हैं।
0: जी काम के
1: जी
0: साथ
1: हाँ
0: साथ मनोरंजन भी हो जाता है।
1: हाँ जी
0: जी, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। आप काम करते रहिए और इसी तरह से हमारे साथ भी जुड़ते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो हफलोंग,
1: हेलो
0: नमस्ते
1: नमस्ते बहन
0: जी। आप अपना परिचय दीजिए।
1: जी। मैं महाराष्ट्र ग्राम कराड़ जिला सातारा से तुकाराम जाधव बोल रहा हूँ
0: तुकाराम जी, आप
1: जी।
0: कैसे हैं?
1: हम ठीक है, आप कैसे बहन जी?
0: हम भी ठीक है।
1: और आपका हफलोंग परिवार?
0: हमारे हफलंग परिवार भी स्वस्थ है, खुशी से है
1: जी, धन्यवाद।
0: जी।
1: मौसम का क्या रहे है उधर आसाम में?
0: हमारे असम में मौसम कई कई जगह पर तो बाढ़ आई हुई है, और हमारे यहाँ पे कभी बारिश कभी धूप चलती रहती है हमारी।
1: हमारे बारिश लेकिन हल्की हल्की से गिर रही, बाढ़ भी किधर भी रहे है। महाराष्ट्र में कई जगह अभी तक बरसात नहीं हो पाया है।
0: फिर तो गर्मी की कहर टूट रही है आप पर, सारी दुनिया पे ही गर्मी छाई हुई है जी। तुकाराम जी, आज आपका फरमाइश क्या है हमारे लिए?
1: पैसा सावन,
0: प्यासा सावन फिल्म से कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
1: मेघारे मेघारे मध्य प्रदेश दारे,
0: जी, जरूर महाराष्ट्र में मेघा बरसे, ये हम आशा करते हैं।
1: कुछ मित्रों के नाम लेना चाहता हूँ। हाँ,
0: जरूर लीजिए।
1: सबसे पहले मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: धन्यवाद।
1: हमारे मित्र PSI राजशेखर जी, कांताबाव रामगढ़े जी, विठ्ठल पवार जी, किरण शिंदे जी, सतीश गाडगे जी, रामभाव सरवदे जी, गौतम कोकाटे जी, विकास शेडगे जी, श्रीकांत मंडारे जी, विजय पाटिल तारुक जी, धनंजय केले जी, रमेश जाधव और उदय काले जी, हम सब जी सुनना चाहते हैं।
0: आप और आपके सभी दोस्तों के साथ, और आपने हमें डेडिकेट किया, तो हमारे साथ भी ये खूबसूरत गीत आपके लिए। और
1: जी जी
0: आपने हमें फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो हफलोंग,
1: हेलो हाफलोंग जी,
0: नमस्ते
1: नमस्ते। मैं देवाशीष हजारिका बात कर रहा हूँ माजुली से।
0: जी। बहुत ही खूबसूरत जगह से आपने हमें फोन लगाया है।
1: जी हाँ,
0: आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: सुनेंगे विलो फिल्म का नाम है
0: जी
1: और जो गाना है वो है खुदाया खैर।
0: जी आपकी फरमाइश तो हमने सुन ली
1: जी
0: है, और अब हमें थोड़ी सी बताइए कि माजुली के बारे में
1: हाँ, माजुली बहुत खूबसूरत जगह है दीदी
0: क्या क्या है, हमें बताइए ताकि हम ये बात श्रोताओं तक पहुंचा सके।
1: जी। माजुली में तो दीदी होता है छत्र। हाँ,
0: और
1: छत्र के लिए लोग बहुत दूर से आते हैं।
0: जी,
1: छत्र ही माजुली का ज्यादा पॉपुलर होता है। देखने
0: और देखने लायक क्या है?
1: तो यहाँ खूबसूरत नजारा है,
0: जी
1: रिवा आइलैंड है। जी
0: जी जी धन्यवाद आपका,
1: जी
0: और आपने हमें फोन किया इसके लिए भी आपका एक और बार शुक्रिया।
1: जी धन्यवाद।

0: हेलो हफलोंग,
1: जय माता दी।
0: जय माता दी। आप कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं आपसे बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंशमल बुगला। जी
0: बताइए आप
1: मैडम।
0: कैसे हैं?
1: बस मैडम बढ़िया हूँ। आपके कार्यक्रम में मेरा पहली बार ही फोन लगा तो बहुत खुशी हो रही है मैडम।
0: आपका पहली बार कॉल है तो हम भी आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में।
1: जी मैडम, थैंक यू मैडम।
0: जी, आपके दोस्त तो आपका नाम हमेशा लेते रहते हैं, आज आपने खुद कॉल कर लिया है, हमें भी अच्छा लग रहा है। तो आज जब आपने पहली बार कॉल किया है तो बताइए, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: तो फिल्म का नाम रहेगा सुहाग,
0: जी
1: उसमें एक माता का भजन है, अगर आपके पास सुहाग मिल जाएगी तो।
0: जी जरूर
1: जी कुछ में भी मैं, जैसे मेरे साथी मेरा नाम लेते हैं तो मैं भी ले सकता हूँ।
0: जरूर लीजिए।
1: जी सबसे पहले तो आप है
0: जी धन्यवाद।
1: और मेरा दोस्त है रमेश भैया जी है, रमेश पात्र जी है, अमल है, विमल है, अंजलि है और जितने भी आपके आकाशवाणी आप लोग कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को मैं सुनाना चाहता हूँ मेरे लिए गाना।
0: आप सभी के लिए और हमारे लिए भी ये खूबसूरत गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, हम खुद भी आपके साथ इस गीत को सुनेंगे।
1: थैंक यू मैडम।
0: जी धन्यवाद।

0: हेलो हफलोंग,
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार। आप कौन बोल रहे हैं?
1: बेमेतरा जिला से बोल रहा हूँ मैम, आपका साथी सुरेश कुमार सारथी।
0: जी, सुरेश कुमार सारथी जी।

0: आपका हाल चाल बताइए हमें।
1: बहुत बढ़िया है मैम। अब बरसात लग गई है, आषाढ़ लग चुका है। अभी बरसात की हल्की हल्की जो फुहारे हैं हमारे बदन पे पड़ रहे हैं, तो बहुत ही सुकून मिल रहा है मैम।
0: जी, थोड़ी सी राहत गर्मी से अब भगवान जी दे रहे हैं आपको।
1: जी, थोड़ी सी राहत मिली है भीषण गर्मी से, और अभी हमने पीपल और नीम का और बरगद का झाड़ लगाए हुए हैं मैम।
0: जी, बहुत ही अच्छा काम किया है आपने।
1: ये छायादार वृक्ष वृक्ष होता है
0: जी
1: और बहुत घना रहता है मैम, और गर्मी के मौसम में इसके नीचे में बैठने से बहुत सुकून और बहुत आनंद मिलता है मैम।
0: सही कहा।
1: और मैं तो मैम इत्तेफाक से, जैसा मेरा नाम सारथी है वैसे मेरा कारोबार भी सारथी का है मैम। पहले
0: जी
1: जमाने में
0: जी
1: रथ
0: जी
1: टांगा घोड़ा हुआ करता था, अब तो सब धीरे धीरे लुप्त हो गई। तो मैं ड्राइवरी काम करता हूँ मैम, वाहन चलाता हूँ।
0: अब थोड़ा सा आधुनिक हो गए हैं और आप वो रथ से गाड़ी में आ गए हैं।
1: का समय है मैम,
0: जी,
1: धीरे
0: वही
1: धीरे
0: तो।
1: परिवर्तन हो गई है।
0: आप सारथी अभी भी है।
1: जी मैम,
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और
1: और मैं तो 30 साल से वाहन चला रहा हूँ मैम,
0: जी
1: और अदर स्टेट सब जाते रहता हूँ। आपके असम भी गया हूँ, इम्फाल कामाख्या देवी वगैरह सब घूम कर आ गया हूँ मैम। गाड़ी लेकर गया था
0: असम आपको कैसा लगा?
1: असम, बहुत ही सुहाना सफर रहा हमारा मैम, और बहुत ही बढ़िया लगा। और चाय की बगान वादियों को सब देखा, तो हमको बहुत ही सुकून हमारे इच्छा जागृत हुआ मैम।
0: जी, बहुत बढ़िया। और अब जल्दी से हमें अपना फरमाइश भी बता दीजिए।
1: फरमाइशी गीत है मैम, प्रोफेसर प्यारेलाल, धर्मेंद्र और जीना तमान पर फिल्माया गया है, और मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में है मैम। तेरे
0: जी
1: दीवाना किसी का बनूंगा, खुले जिगर से मैं लिख के ये दूंगा, ये वादा रहा साजना, ये वादा रहा साजना। ये वाली गीत है मैम।
0: जी बहुत बढ़िया।
1: जी मैम, और आपके पूरे परिवार, आपके पूरे आकाशवाणी केंद्र के यूनिट को हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे सारथी परिवार की ओर से। और मैं अपने थोड़े से बच्चों का नाम ले लूं मैम।
0: जी,
1: मेरा बड़ा लड़का है मैम कमलकांत सारथी, जो पीडब्ल्यूडी में कार्यरत है,
0: जी
1: और लड़के और है वीरेंद्र खान सारथी और वीरज खान सारथी, जो मकान ठेकेदारी के काम करते हैं मैम। और मैं वाहन चलाता हूँ, और मेरी
0: जी
1: धर्म पत्नी रही है, घर में रहती है श्रीमती पूर्णिमा सारथी।
0: जी आप सभी के लिए ये खूबसूरत गाना हम पेश कर रहे हैं। फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो हफलोंग,
1: हेलो आप लोग।
0: नमस्ते। आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं दिनेश से बोल रहा हूँ, जोहर में। हाँ,
0: जी, बताइए, आज आपकी फरमाइश क्या है?
1: अदानी का गाना हम बता देगा। पड़ोसी पड़ोसी।
0: जी, बहुत बहुत
1: हाँ
0: शुक्रिया आपका। आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो हफलोंग,
1: हेलो हेलो दीदी,
0: नमस्ते
1: नमस्ते दीदी। मैं हावड़ा घर से दीदी।
0: जी। अखलास जी, बताइए आप कैसे हैं।
1: मैं ठीक है दीदी, आपने कैसा है दीदी?
0: मैं भी ठीक हूँ।
1: दिला
0: बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: सिकंदर कुमार सानू का गाना है दीदी। ठीक
0: आपको हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। फोन करने के
1: है
0: लिए धन्यवाद।

0: हेलो हफलोंग,
1: हेलो।
0: नमस्ते। आप परिचय दे अपना।
1: नमस्ते मैम, मैं प्रेमजी चक्रवर्ती बोल रहा हूँ, आसाम सिवनी डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। मैं तो कार्यक्रम को एक गाना सुनना चाहता हूँ। कार्यक्रम
0: जरूर हम आपको गाना सुनवाएंगे, बताइए आपकी फरमाइश।
1: का नाम है सागर,
0: जी
1: किशोर कुमार और लता जी की आवाजों में सागर किनारे।
0: जी जरूर, हम आपको ये खूबसूरत गीत
1: मुझे बहुत
0: सुनवाएंगे।
1: बहुत अच्छा लगता है।
0: जी जी
1: बहुत
0: जी
1: और के मैडम, आपको नमस्कार,
0: जी
1: धन्यवाद, आप अच्छा लगे।
0: और हम भी आपको सुनवा रहे हैं

दोस्तों, इस फोन कॉल के साथ ही समेटते हैं इस हफ्ते का पहला एपिसोड। आज जिन श्रोताओं की फरमाइश हमने पूरी की है उनका बहुत बहुत शुक्रिया हमें फोन करने के लिए। जिन श्रोताओं का नाम आज शामिल नहीं हो पाया उनकी फरमाइश लेकर हम कल फिर हाजिर रहेंगे ठीक रात 9 बजे। इंतजार कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हेलो हाफलॉन्ग, जिसे प्रस्तुत किया था संयुक्ता दत्ता ने।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर यूपीआई से।
2: ये लो यार, यूपीआई ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
0: श्रोताओं, रात के 10 बजने ही वाले हैं। चलिए जाते जाते सुनते हैं कुछ एक दो फिल्मी गाने। पहला गाना हम सुनेंगे हेमलता जसपाल सिंह चंद्रानी मुखर्जी की आवाज में। चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही चित्र गीत कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 10 बज चुके हैं। इसी के साथ ही आज की दूसरी सभा यहीं पर समाप्त होती है, पर कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे यानी शर्मिला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।